वंदे मातरम। मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन मंगलवार है। सक्षमत 1948 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026 सुबह के 5:58 और 19 सेकेंड हुए हैं। आरंभ होता हमारा आज का दैनिक प्रसारण। आप सबों का आज का दिन शुभ हो। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मोज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन आत्मविश्वास।
3: आज की ये सुबह कितनी सुहावनी है। सुनहली धूप में सारी धरती खिल उठी है। धीरे धीरे बहती हुई हवा के झोंके आ रहे हैं। पेड़ों की हरी हरी पत्तियां मस्ती में झूम रही हैं। चिड़ियां चहक रही हैं। फूल और पौधे मानो खुशी से नाच रहे हैं। छोटे छोटे किलकारियां भरकर बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपका हृदय इस आनंद मेले को देखकर हर्ष का अनुभव नहीं करता? क्या इस विराट संगीत समारोह में भाग लेने के लिए आपका मन आतुर नहीं हो उठता? तो समझ लीजिए, आप अपने जीवन में अनायास प्राप्त एक महान अवसर से हाथ धो रहे हैं। आप आज की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आपका शरीर आज की दुनिया में भले ही हो, पर मन अतीत के भोगे हुए क्षणों में उलझा है या भविष्य के बीहड़ जंगलों में भटक रहा है। और यही वो सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सुख चैन से जीने नहीं देती।

0: हम वर्तमान को भोग नहीं सकते, लेकिन अनागत या अतीत के सपनों का निरर्थक ताना बुनने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर डालते हैं। फिर वर्तमान को अगर हम जीते भी हैं तो हारे थके मन से, मानो जीना नहीं चाहते, विवश होकर जीते। लेकिन ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई, अगर हुई भी तो उधार की हुई, अपनी नहीं। क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं, जहां अपना कहने लायक भी कुछ नहीं, और जहां अपना कहने लायक कुछ नहीं हो, वहां भला सुखी कैसे मिल सकता है। कारण स्पष्ट है, जिंदगी सदा वर्तमान है, बीता हुआ कल मर चुका है, वो कभी लौट कर आने वाला नहीं, आगामी कल अभी आया नहीं। फिर हाथ में तो वर्तमान ही है। कोयल जब वसंत ऋतु में आम की डाली पर पंचम स्वर आलापती है, तब क्या उसके सामने अतीत की कोई घटना रहती है? या गुलाब के फूल जब बाग बागीचों में अपनी मुस्कान बिखेरते हैं, तब क्या वे भविष्य का कोई सुनहला स्वप्न देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके इस तरह सहज रूप से मुस्कुराने का रहस्य उनके वर्तमान पलों की तन्मयता में है। गुरुदेव रविंद्रनाथ को जब गीतांजलि नामक काव्य कृति पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचकर बोला, क्या तुमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो तुमने अपनी कविताओं में बार बार उसके गुण गाए हैं? रविंद्रनाथ उस समय तो कोई उत्तर नहीं दे सके, किंतु वो वृद्ध व्यक्ति भी सहज ही पिंड छुड़ाने वाला नहीं था, बार बार आ जाता और उनसे वही प्रश्न कर बैठता। एक दिन की बात है, कवि गुरु प्रातःकाल के भ्रमण से लौट रहे थे कि उन्हें सहसा एक विराट दर्शन की अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि वर्षा ऋतु के जो बादल रात भर बरसे हैं, अभी आकाश से कहीं दूर चले गए हैं और चारों ओर सुनहली धूप भी हंस रही है। सूर्य का प्रतिबिंब हजार हजार टुकड़ों में नीचे धरती पर पानी से भरे अनगिनत जलाशयों पर पड़ता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब अपने आप में पूरा है, एक भी खंडित या विकलांग नहीं है, सब में पूरा सूर्य उतरा है। रविंद्रनाथ इस अद्भुत दृश्य को देखकर चमत्कृत से रह गए, उनकी प्रसन्नता का पारावार उमड़ पड़ा। जिस पथ से वो घर लौटते, उसी के किनारे वो वृद्ध व्यक्ति भी रहता था। सदा की भांति आज भी उसने कविवर को अपने घर के सामने से जाते देखा और देखते ही फुर्ती से दौड़कर उनको घेर लिया। किंतु इसके पहले कि वो अपने प्रश्न को दोहराए, रविंद्रनाथ की अपूर्व मस्ती भरी मुस्कुराहट को देखकर ही इतना मुग्ध हो गया कि उसके मुंह से निकल पड़ा, आज प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे मुखमंडल पर आनंद की आभा से ही मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सचमुच वो दिन धन्य होता है जब हम आज की अनुभूति में आनंद विभोर हो जाते हैं। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है, सही मायने में हम तभी जीते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन आत्मविश्वास FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 6:10 और 5 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

जिन पर प्रभु की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख नहीं छू सकता। मन में कपट, दंभ और माया न हो तो ईश्वर वास करते हैं।

मूर्ख व्यक्ति के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ नीति और क्रोधी आदमी के साथ शांति की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने नैतिक मूल्यों का और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भरत ने राजपाट और लक्ष्मण ने सुख सुविधाओं का त्याग कर निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया।

0: तरह सिंह गाय इसी गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 375 375।

भगवान शिव पार्वती को काक भुशुंड की सिद्धत्व प्राप्ति की कथा सुना रहे हैं। सुमेरु पर्वत के और उत्तर में एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी नील पर्वत है। इस पावन स्थल पर काक भुशुंडी हरि का भजन, जप और यज्ञ तथा मानस पूजा करते हैं और वहां पहुंचे श्रद्धालु पशु पक्षियों को हरि कथा सुनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7 बजे का समय होगा लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग का और 7:20 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज के विषय होगा महिलाओं में पीसीओडी के कारण लक्षण एवं बचाव। 7:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से और आज 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

8:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। नौ बजे आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। दिन के 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आज के चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। ग्यारह बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रम को हमारे मुंबई केंद्र से। दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 1:07 पर आप सुनेंगे फिलर 1:10 पर प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। 2:52 पर आप सुनेंगे विज्ञापन और 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। चार बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। 4:29 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। शाम के 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 5:02 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 5:32 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। 6:30 पर समय होगा फिल्म संगीत का। सात बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। 7:30 पर समय होगा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स का। 8 बजे आप सुनेंगे फार्मेसी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत। और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9। 9:15 पर स्पोटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। 10:30 पर आज के फनकार आप सुनेंगे। और रात्रि के 11:10 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि के 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सब कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयास हि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं

0: निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17-2017 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामि यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 30-2 पराजितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:00 हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर सोमर साहू के गाए लोकगीतों को।
2: अरे तुलसी तुलसी सब कहे तो तुलसी बन की घास, अरे तुलसी तुलसी सब कहे तो तुलसी बन की घास।

0: कार्यक्रम का अगला लोकगीत गोविंद कुमार सिंह और साथियों के स्वर में, लेकिन इस गीत से पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आसमान के स्वर्ग गए जगत के साथ लोकितों का कार्यक्रम लोकरंग यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के करीब सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत। क्षमा करें दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंटवार्ता। विषय है महिलाओं में पीसीओडी के कारण, लक्षण एवं बचाव। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर हाले बदर, भेंटकर्ता मोहम्मद अली सबीर अंसारी।

0: श्रोता, आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं शहर हजारीबाग की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हाले बदर, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे महिलाओं में या युवतियों में पीसीओडी जो एक आम बीमारी आजकल हो गई है, ये क्या है, इसके होने के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद। आज मैं बात करूंगी एक समस्या जिसे हम पीसीओडी नाम से जानते हैं, जो महिलाओं में, लड़कियों में बहुत अमूमन पाई जाने लगी है आजकल।
0: जी,
1: ये एक ऐसी समस्या है जो जिसमें कि नाम में ही इसका मतलब छुपा है कि ओवरीज जो होते हैं, जो अंडेदानी होती हैं, उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं।
0: जी।
1: तो उस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं।
0: जी।
1: अगर किसी लड़की में

0: या किसी महिला में चढ़ चढ़ के पीरियड्स आते हैं, जो मासिक आते हैं वो चढ़ चढ़ के आते हैं या कम आते हैं, या फिर साल में 2 से 3 बार आते हैं या 6-6 महीना में आते हैं, तो उस या फिर दवा खाने के बाद ही मासिक आते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग पीसीओडी कहते हैं। मतलब वो एक कंडीशन है जिसमें और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कील मुहासे आ जाना, बाल झड़ना, या फिर शरीर में काले धब्बे हो जाना, या फिर इनफर्टिलिटी, मतलब कि प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होना, बच्चा काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि महिला को पीसीओडी की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
1: जी जी मैम, आपने एक चीज़ कहा कि महीना जो चढ़ चढ़ के आता है, तो चढ़ चढ़ के आने का मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड होता है वो उस समय पर वो पीरियड नहीं होता है।
0: नॉर्मली जो साइकिल होता है वो 22 नॉर्मली तो एवरेज जो होता है वो 28 डेज या 30 डेज का साइकिल होता है, लेकिन अगर किसी को 22 डेज या 35 डेज में भी आ रहे हैं साइकिल्स तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 22 डेज से कम या फिर 35 डेज से ज्यादा में साइकिल होने लगे तो उसे हम गड़बड़, मतलब अब नॉर्मल साइकिल कहते हैं। तो इसमें जो साइकिल्स होते हैं 35 डेज से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, अगर साइकिल्स मोर देन 35 डेज होते हैं तो, या फिर अगर 2 महीने में आते हैं या 3 मंथ्स में आते हैं या 6 मंथ में आते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको ओलिगोमेनोरिया, एक टर्म होता है मेडिकल टर्म, तो वो एक क्राइटेरिया है जो कि पीसीओडी में होता है। पीसीओडी के कुछ 2-3 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से एक क्राइटेरिया ओलिगोमेनोरिया या पीरियड का चढ़ चढ़ के होना
1: होता है। तो मैम, जैसे एक पीरियड के चढ़ चढ़ के होने का एक ये वजह भी तो हो सकती है शायद कि हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी हो या फिर और कुछ?
0: हाँ, तो इस तरह की महिलाएं या इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आती हैं, तो हम उसके कुछ बेसिक टेस्ट्स लिखते हैं, जैसे कि पहले तो उससे हिस्ट्री लेते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम कब से है, पहले पीरियड्स आपके ठीक होते थे या अब अभी से, मतलब कब से उनको प्रॉब्लम हो रही है, रिसेंटली ऑनसेट हुआ है, या और भी सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं कि शरीर में अनचाहे बाल आ रहे हैं या नहीं, कील मुहासे हो रहे हैं या नहीं, और अचानक से वजन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो वो ये सब कंडीशन जो है वो सब हम लोग हिस्ट्री में पूछते हैं। उसके बाद उन्हें कुछ बेसिक टेस्ट लिखते हैं, जिसमें से एक हेमोग्लोबिन या सीबीसी भेजते हैं, जिसमें कि ये पता चलता है कि हो सकता है कि खून की कमी से भी उसे पीरियड्स के प्रॉब्लम हो रहे हो, तो ये सब ऐसे हम लोग रूल आउट करते हैं, कुछ कुछ कंडीशन, एनीमिया का कंडीशन रूल आउट करते हैं, या फिर कोई शरीर में हार्मोन का कुछ इम्बैलेंस हो गया है, जैसे थायराइड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, तो वो सबको हम लोग रूल आउट करते हैं पहले। हालांकि पीसीओडी में थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बेसिक ये सब हार्मोनल टेस्ट लिखते हैं पेशेंट्स को, जिससे कि हम लोग डायग्नोसिस तक जा सकते हैं कि आखिर एक्चुअल रीजन क्या है उसे इस तरह के सिम्टम्स होने के।
1: तो जरूरतन आप जरूरत के हिसाब से आप टेस्ट भी करवाते हैं
0: और एक अल्ट्रासाउंड भी लिखते हैं। तो कई बार महिलाएं आती हैं कुछ और कंडीशन या कुछ और सिम्टम्स लेके, तो उन्हें अगर अल्ट्रासाउंड लिखा गया तो उस अल्ट्रासाउंड में एक तरह का वो इंसिडेंटल फाइंडिंग हो जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वो पीसीओडी नहीं, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी एक कंडीशन है जिसमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड में सिर्फ ओवरीज में सिर्फ छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन उन्हें सिम्टम मान लीजिए नहीं है कि पीरियड्स का प्रॉब्लम या फिर अनचाहे बाल या फिर कील मुहासे होना, ये सब सिम्टम नहीं है, बस उसको अल्ट्रासाउंड में ये प्रॉब्लम आया है कि पीसी पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिखाया है, तो वो कंडीशन में हम लोग पीसीओडी डायग्नोज नहीं कर सकते हैं, वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो पीसीओडी नहीं कह सकते। पीसीओडी तभी कह सकते हैं जब 2-3 तरह के सिम्टम्स कंबाइंड एक साथ है और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ एक और हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन होता है जो नॉर्मली फीमेल्स में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पीसीओडी कंडीशन में ये बढ़ जाती है, टेस्टोस्ट एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपर लिप्स में बाल आ जाते हैं या अनचाहे बाल चेहरे पे या बॉडी में कहीं पर भी अनचाहे बाल हो जाते हैं, तो वो एक हार्मोन होता है जो पीसीओडी में हो जाता है।
1: तो कारण तो समझ में आ गया कि, और फिर आप टेस्ट से भी आप पता लगा लेती हैं, और जब ऐसा डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट हमारा पीसीओडी से सफर कर रही है, तो फिर इसके ट्रीटमेंट में क्या?
0: ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग पेशेंट को ये समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम आजकल ज्यादा मात्रा में, ज्यादा नंबर्स में क्यों पेशेंट्स में देखा जा रहा है। छोटी छोटी लड़कियां जो अभी प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंची हैं, उन लोग ये कंडीशन लेके आती हैं, तो उन्हें समझाना पड़ता है कि आजकल का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, हेल्दी फूड हैबिट चेंज हो गया है। पहले थी महिलाएं या लड़कियां या बच्चे बहुत दौड़ धूप करते थे, बाहर निकलते थे, या जो महिलाएं हैं वो घर में भी ज्यादा से ज्यादा काम करती थी। आजकल हो गया है कि वर्किंग फीमेल्स हैं या फिर मोबाइल लैपटॉप के सामने ज्यादा देर तक बैठे रहती हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है एंड फूड हैबिट भी गड़बड़ हो गई है, अनहेल्दी बाहर का जंक फूड, तले हुए या फिर चीनी, रिफाइंड शुगर वाले चीज, मीठे चीज, पैक्ड फूड, ये सब अनहेल्दी खाने के जो हैबिट है, रात रात भर जगना, मोबाइल के पीछे टाइम पर नहीं सोना, पूरी नींद नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होना, तो ये सब जो रिस्क फैक्टर, हाँ ये सब वजह, यही वजह है पीसीओडी मतलब के सिम्टम्स को उजागर करने के लिए। तो हम लोग पहले, सबसे पहले पेशेंट्स को समझाते हैं कि आपको दवा तो फायदा करेगी ही, इसमें हॉर्मोन्स लिखे जाते हैं, पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए हॉर्मोन्स लिखे जाते हैं, बट सबसे पहले मेन काम आपको करना है कि आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है एंड हेल्दी डाइट लेना है। डेली 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, कुछ भी, किसी भी फॉर्म में, स्किपिंग है, वॉक है, योगा है, जिम है, किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी आपके होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल वर्क। ये नहीं, बहुत सारी महिलाएं बोलती कि मैडम हम तो घर में ही काम करते हैं, नहीं, आपको आधा घंटा और 45 मिनट अलग से आपको अपने बॉडी के लिए देना है, जिससे कि आपका बॉडी वेट ना बढ़े और वेट कंट्रोल में रहे और आपका ये सिम्टम सबसाइड कर, क्योंकि पीसीओडी केसेस में आप देखिएगा कि पेशेंट का वेट भी बढ़ने लगता है और वेट बढ़ता है तो फिर वो बदले में बॉडी में और पीसीओडी के लक्षण को बढ़ाता है, क्योंकि उस केस में बॉडी में एक कंडीशन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, कि मतलब बॉडी का इंसुलिन जो है वो एक तरह का, उसमें वो बॉडी में आने वाले ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो बॉडी में और डिपॉजिट हो जा रहा है ग्लूको शुगर इन द फॉर्म ऑफ फैट, लिवर में, बॉडी में हर पार्ट में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी और वेट और बढ़ जाता है। तो बॉडी वेट बढ़ना और फिर पीसीओडी का उससे रिलेशन होना, ये एक चक्रव्यूह बना देता है। तो हमारा काम है इस चक्रव्यूह को तोड़ना। आप बॉडी वेट कंट्रोल कीजिए तो आप पीसीओडी से निजात पा सकते हैं।
1: मैम एक चीज और, अभी आपने कही कि बॉडी वेट भी बढ़ता है तो फिर बॉडी का हेवीनेस भी हो जाता होगा।
0: हाँ बिल्कुल हो जाता है, फटीग हो जाता है, मतलब कमजोरी लगती है, कोई काम में मन नहीं लगता है और वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: थायराइड भी का प्रॉब्लम हो सकता है।
0: बिल्कुल, थायराइड का प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू पीसीओडी। पीसीओडी में जो भी हार्मोन इंबैलेंस होता है उसमें थायराइड हार्मोन भी इंबैलेंस हो जाता है, वो भी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत एक भेंटवार्ता, विषय था महिलाओं में पीसीओडी के कारण, लक्षण एवं बचाव। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर हाले बदर और इनसे बातें कर रहे थे मोहम्मद अली सब्बीर अंसारी। इसके साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम के गीतों को।

0: दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना जिसे गाया है अनु मलिक ने, लेकिन इस गीत से पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम के गाए गीतों को। और दोस्तों, इसी के साथ गैर फिल्मी इल्म के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके ठीक बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम अपने रांची केंद्र से रिले करेंगे। इसके लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
8: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
9: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
10: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
12: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI

0: कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

0: states that as India moves steadily towards becoming an aging nation, ensuring safety, dignity and emotional security for senior citizens must become a national priority. India at present is a young nation, but it is aging rapidly. By 2050, the country will have a significant elderly population. As the country progresses and new technologies emerge, they also have a downside. They are alienating a large section of society, senior citizens who find it difficult to cope with evolving technology and changing time. So when the government begins to implement key pledges, notice the Asian age. New Delhi, all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum, called the Beatles at 3 Savile Row, is set to open next year in the Mayfair building, where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने और एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालूघाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। कहा, पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का न करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल सरदारधाम छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक बार फिर ईंधन बचाने और कार्यालयों में ऑनलाइन व्यवस्था को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की अपील देश पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए की गई है। देश में कच्चा तेल, रसोई गैस या अन्य किसी भी तरह के ईंधन की कोई कमी नहीं है। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 17 जिलों के 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। खनन टास्क फोर्स की कल आयोजित बैठक में उपायुक्तों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लीज एग्रीमेंट पूरा कर सफल बोलीदाताओं को बालू घाट सौंपने

0: पर सहमति दी। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में अपराध के मामलों और उनके अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश का इंतजार न करें। जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाल के आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो रही है। प्रदेश भाजपा ने कल धनबाद में बिजली पानी संकट को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल से जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
1: बिजली और पानी को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश की जनता तराही तराही मांग कर रही है। आज घर में सब सूख रहा है भाई, पानी नहीं है, चापाकल खराब पड़े हुए। प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन दम तोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की झारखंड में। कहीं टंकी बना हुआ है तो सप्लाई नहीं है। आम जनता ग्रामीण क्षेत्रों में तराही तराही कर।
0: वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भीषण गर्मी में महिलाएं घरों में रहने के बजाय घड़ा लेकर सड़क पर उतरने को विवश हैं, जो राज्य सरकार की विफलता को दिखाता है।
2: कहीं गांव देहात में चापाकल भी काम नहीं कर रहा और बिजली की हालत तो देख ही रहे हैं। धनबाद में 19 में यहां लगभग 900 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास भी हुआ था, मैथन फेज 2 और फिर जामाडोवा, लेकिन जो योजना 22 में पूरा होना था वह योजना आज तक नहीं पूरा हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है, तो इसलिए सब प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: प्रदेश भाजपा ने झारखंड में हुए ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने, अनियमितताओं की जानकारी सार्वजनिक करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में रक्त से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के साथ जिलों में ब्लड सेवाओं को और सुरक्षित और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल गुड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में विरामचक दियाजोरी बलबड्डा सड़क सुदृढ़ीकरण योजना का शिलान्यास किया। इस योजना की लागत 1,47,00,000 रुपए है। इस दौरान मंत्री ने भुस्का पहाड़ को पर्यटन केंद्र बनाने और पार्क निर्माण की योजना की जानकारी दी। राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कल जमशेदपुर में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि यह एम्पोरियम 25,000 बुनकरों, 120 बुनकर समितियों और 220 कर्मियों की मेहनत, हुनर और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नया एम्पोरियम वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने के साथ स्थानीय शिल्पकारों को बाजार से जोड़ेगा।
3: सरकार की सोच है माननीय मुख्यमंत्री अनिल जी का, रोजगार का बढ़ापा मिलेगा। गांव घर देहात में 25,000 लोगों को अभी तक इस रोजगार में हम लोग जोड़े हैं। हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 2,00,000-2,50,000 लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे और ये इंपोर्ट भी होगा, बाहर भी विदेश भी जाएगा, तो इससे रोजगार को बढ़ापा मिलेगा।
0: चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड ने स्वच्छ ऊर्जा और सौर परियोजना के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पीएम कुसुम योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठाने के बाद गिद्धौर का चयन अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए मॉडल सोलर गांव के लिए किया गया है। चतरा के जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि यहां के किसान अब खेती के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रख रहे हैं।
4: पीएम सूर्य घर योजना जो हम लोग को मिलने वाला है, इससे पूरा घर सूर्य ऊर्जा से घर में बिजली उत्पादन होगा और ये गिद्धौर के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि सरकार हम लोग के देगी, इससे बिजली उत्पादन होगा।
0: और अब मौसम का हाल। झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहने, गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज और कल रांची, बोकारो, हजारीबाग समेत मध्य और पूर्वी झारखंड के जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने ईंधन बचाने, ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने और विदेशी मुद्रा बचाने की प्रधानमंत्री की दोबारा की गई अपील को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पीएम के आह्वान पर मंथन, केंद्रीय मंत्रालय खुद भी कम करेंगे पेट्रोल डीजल की खपत। प्रभात खबर ने लिखा है, अब जमीन से जुड़े फैसले ग्राम पंचायतें लेंगी, रजिस्टर 2 की कॉपी देने का आदेश। दैनिक भास्कर ने जेटेट 2026 में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा के शामिल नहीं होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने जमशेदपुर में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 23 माह बाद जमानत मिलने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी, कहा पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का ना करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:42 और 44 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

0: कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म आ अब लौट चले से। आवाजें उदित नारायण और जसविंदर नेरुला की हैं। लेकिन इस गीत से पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

और दोस्तों अभी हम जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जो हमने लिया है फिल्म अफसाना प्यार का से, इस गीत से पहले सुनते कुछ जरूरी संदेश।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
1: अरे?
2: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इस गीत को गाया है आशा भोसले और उदित नारायण ने।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और आशा भोसले को, फिल्म का नाम था अफसाना प्यार का। और इसी के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:59 और 16 सेकंड हुए हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। इसके लिए करीब बस थोड़ा सा इंतजार।

अभी आप सुन रहे थे नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। दोस्तों आज है 12 मई, आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। दोस्तों पूरी चिकित्सा व्यवस्था में नर्सेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, ये तो हम सभी जानते हैं। आज जो हम ये देख रहे हैं नर्सिंग सेवा को एक सुव्यवस्थित रूप में, इसका श्रेय जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नगर में हुआ था। आपने विश्व युद्ध की विभीषिका के दौरान भी दिन रात घायलों की सेवा की और आपको लोग प्रेम और आदर के साथ द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। आपने नर्सिंग सेवा के प्रशिक्षण की नींव भी रखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सभी नर्सेस के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजों में शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म का गाना। वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक, एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए रांझना फिल्म का गाना, सुखविंदर सिंह, KMMC सूफी एंसेंबल की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल और AR रहमान की तर्ज। पिया मिलेंगे।

आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, प्लांट यानी पौधे ही हमारे पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला फूड चेन की आधारशिला हैं। इनके महत्व और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म का ये गाना।

0: देना क्या ने?
1: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक डांस नंबर आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, अनमोल मलिक की आवाज, कुमार ने लिखा है, इसे जयदेव कुमार ने संगीतबद्ध किया है, आवाज है अनमोल मलिक की, फिल्म का नाम बजाते रहो।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

0: सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया
1: कुछ था। भी नहीं।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हरी भोली।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद, हमें याद रखना
1: तेरी दुनिया।
2: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ।

0: हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:59 और 34 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही स्वीकार करें परमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार भी। दोस्तों आज हम दिन की शुरुआत करेंगे मौसम के हाल के साथ और शहर की गतिविधियों और सराफा बाजार को भी जानेंगे, लेकिन हम दोस्तों दिन की शुरुआत कुछ ऊर्जा और एक अच्छी सोच के साथ अगर करते हैं तो हमारा जो आज का दिन है बहुत ही बेहतर बीतेगा। दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच और मधुर गीत से करने का असर बहुत ही गहरा होता है। सुबह उठते ही दोस्तों अपने पसंदीदा गीत या भजन आप सुन सकते हैं जो आपको ऊर्जा से भर देगा, आपका मन हल्का होगा। साथ ही कुछ पलों के लिए ध्यान आसन करें, गहरी सांस के साथ खुद को जोड़ें, अच्छी सोच के साथ दिन की शुरुआत करें, अपने लक्ष्य को याद रखें, आपके पूरे दिन को यह बात नई सकारात्मक दिशा देगी। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले आपको बता देते हैं आज का मौसम कैसा होगा। आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस होगा, बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना है, तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम शहर में अनुष्ठान की बातचीत करें तो आज भगवत गीता का पाठ किया जाएगा झील सेंटर में शाम के 6 बजे। कैरम टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच भी होगा, आज का हजारीबाग प्रेस क्लब में 10 बजे से आरंभ हो चुका होगा। और सराफा बाजार की अगर हम बातचीत करें तो सोना 22 कैरेट 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो 2,78,000 रुपये होगी। दोस्तों इस जानकारी के साथ हम एक गीत का आनंद लेते, उसके बाद हम आपसे बातें और भी करेंगे।

उम्मीद करते हैं दोस्तों ये गीत आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अब हम आज जानकारी के क्रम में आज हम आपको बता दें कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस आज ही के दिन यानी 12 मई को मनाया जाता है। यह दिवस पौधों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, क्योंकि पौधे हमारे भोजन का 80% और ऑक्सीजन का 98% हिस्सा प्रदान करते हैं, जो भूख मिटाने और गरीबी कम करने में सहायक होते हैं। पौधे की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, जैव विविधता को बनाए रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और यह दुनिया को याद दिलाता है कि स्वास्थ्य पौधे जीवन, पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य सुरक्षा की नींव भी है। पादप कीटों के कारण हर साल फसलों का लगभग 40% हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिससे खाद्य आपूर्ति प्रभावित होती है। और IPPC यानी अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन ने 12 मई 2026 को इस दिवस के लिए वैश्विक स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की। बच्चों के लिए इस विषय पर गतिविधियां, पुस्तकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कई गतिविधियां विभिन्न स्तरों पर की जाती है। और दोस्तों हम आज आपको बता दें कि विभिन्न अखबार में छपी खबरों के मुताबिक कौन कौन किन खबरों को प्रमुखता से, कौन से अखबार ने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। आइए जानते हैं हजारीबाग भास्कर क्या कुछ कहता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, पूर्व डीसी ने एक हफ्ते में समाधान का दिया था आश्वासन। स्कूल ड्रेस बनाकर देने वाली दो महिला समूह का 3 साल से 3.82 करोड़ अटका। हजारीबाग जिले में सरकारी व्यवस्था को सुस्ती का बड़ा मामला सामने आया है। स्कूली बच्चों के लिए पोशाक तैयार कर समय पर आपूर्ति करने वाली दो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 69 संथाली महिलाएं अपनी मेहनत की कमाई के लिए 3 वर्षों से भटक रही हैं। 8 प्रखंडों में 76,162 पोशाक की आपूर्ति के बावजूद 3,82,49,048 रुपये का अब तक बकाया है। और कजरी कॉटन महिला स्वयं सहायता समूह और मार्शल प्राथमिक सहयोग समिति लिमिटेड से जुड़ी महिलाओं ने वर्ष 2023 में सरकारी योजना के तहत पोशाक तैयार कर आपूर्ति की थी। ड्राई जोन बना दिया 288 फ्लैट, लोग बोले घर तो दिए, एक बाल्टी पानी भी दे दीजिए। यह कहना है हजारीबाग भास्कर का। हजारीबाग में स्वच्छता एवं पेयजल विभाग के दिल्ली व रांची की टीम निरीक्षण के लिए आई हुई थी। इस टीम को नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार अपने साथ लेकर उन जगहों पर गए जहां सरकारी आवास या फिर गरीबों के लिए आवास बने हैं। यह टीम देखने गई थी कि जहां उन्हें आवास दिया गया है उसमें रह रहे लोगों को पेयजल की उपलब्धता की स्थिति क्या है। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने टीम को लेकर प्रधानमंत्री शहरी आवास के तहत बने कोलघट्टी पहुंचे। वहां 288 फ्लैट में रहे महिला, पुरुष और बच्चों ने टीम को घेर लिया। लोगों ने टीम से यही कहा कि जिस जगह पर पानी ही नहीं है, जहां पानी नहीं है, ड्राई जोन घोषित है, वहां पर आपने 288 फ्लैट कैसे बना दिया? फ्लैट बनने के पहले वाटर लेयर की जांच क्यों नहीं हुई? बैंक में महिला से ठगी, रुपये गिनने के बहाने 20,000 लेकर फरार। ये भास्कर हजारीबाग भास्कर का कहना है। हजारीबाग प्रखंड स्थित भारतीय स्टेट बैंक में सोमवार को ठगी की एक घटना सामने आई है, जहां बैंक परिसर

की ओर चले गए। इसी बीच युवक मौके का फायदा उठाकर वहां रखे लगभग 20,000 रुपए लेकर फरार हो गया। खबरों में हम आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा संगीत।

और दोस्तों अब कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहता है प्रभात खबर और किन खबरों की इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। अब जमीन से जुड़े फैसले ग्राम पंचायतें लेंगी, रजिस्टर 2 की कॉपी देने का आदेश। पेशा के तहत अब ग्राम पंचायतें जमीन से जुड़े मामले में सिर्फ सलाह नहीं देंगी बल्कि सुनवाई और फैसले की प्रक्रिया में उनकी सीधी भूमिका होगी। उनके लिए रजिस्टर 2 की प्रति मिलेगी जिसमें जमीन की सरकारी रिकॉर्ड दर्ज रहता है, जिससे पंचायत यह देख सकेगी कि किस जमीन का मालिक कौन है, कहीं अवैध हस्तांतरण या कब्जा तो नहीं हुआ। जरूरत पड़ने पर भूमि वापसी, बेघर लोगों के लिए गृहस्थल चयन और भूमिहीन की खेती का अवसर देने जैसे फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जा सकेंगे। इससे जमीन विवादों के निपटारे में गांव की भागीदारी बढ़ेगी। पंचायती राज विभाग के निदेशक राजेश्वरी बी ने भू राजस्व सचिव को पत्र लिखकर सभी सीओ को पंचायतों को रजिस्टर 2 की प्रति दिलाने का आदेश देने का आग्रह किया है। नियमावली के अध्याय 15 के में पूर्व में स्थानांतरित की गई भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रावधान है। पेशा कानून की कंडिका 33 के अनुसार भूमि वापसी संबंधित कार्रवाई विल्किंसन रूल और अन्य प्रथागत कानूनों के तहत की जाएगी, जिससे इसके लिए ग्राम पंचायतों को रजिस्टर 2 की आवश्यकता होगी। और पंचायती राज निदेशक ने भू राजस्व विभाग से हर वर्ष की शुरुआती 15 दिनों के भीतर पंचायतों की रजिस्टर 2 की अद्यतन प्रतिलिपि दिलाने का अनुरोध किया है। ई पेंशन पोर्टल पर सुधरेगी पेंशनरों की अधूरी जानकारी, कहना प्रभात खबर का। अगर आप वर्ष 2016 से पहले के पेंशन भोगी हैं और आपके पेंशन रिकॉर्ड में कोई जानकारी अधूरी या गलत या गायब है तो अब उसे ऑनलाइन ठीक किया जा सकेगा। राज्य के वित्त विभाग ने इसके लिए ई पेंशन पोर्टल पर नया इंटरफेस तैयार किया है। हाल के दिनों में कोषागारों में वेतन और पेंशन की फर्जी निकासी के मामले सामने आने के बाद विभाग ने पुराने पेंशन रिकॉर्ड को व्यवस्थित और त्रुटिहीन बनाने की पहल की है। इसका मकसद पेंशनभोगियों के रिकॉर्ड को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। सेंसेक्स 1313 अंक लुढ़का, सोने के शेयर 10% तक गिरे। वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण सोमवार को घरेलू शेयर बाजार धराशायी हो गया। बीएससी सेंसेक्स 1313 अंक टूटकर 76015 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24000 के स्तर के नीचे आ गया। बंगाल सरकार ने बाड़बंदी के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण को दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सीमा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी यानी फेंसिंग के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। पूर्व मुख्य सचिव को यह प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य की करीब 569 किलोमीटर खुली सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए स्मार्ट फेंसिंग और सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दोस्तों अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहता है प्रभात खबर और किन खबरों की इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ की हत्या में यूपी और बिहार से 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी

सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्यों ने इस मामले में बिहार और यूपी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मयंक राज मिश्रा, विकी मौर्य और राज सिंह बताए जाते हैं। इनमें 2 युवक मयंक राज और विकी मौर्य बिहार के बक्सर जिले का निवासी है, वहीं राज सिंह यूपी के बलिया जिले का अन्नगर इलाके का निवासी बताया गया है। लापता बच्ची को खोज निकालने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, सूचना देने पर 50,000 का इनाम। सदर थाना क्षेत्र के खराटोली रोड नंबर 1 से गत 9 मई की शाम को 4:30 बजे से लापता 18 माह की बच्ची अदिति का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मामले में हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने रांची के डीसी, रांची पुलिस और झारखंड पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि अदिति बिटिया की खोज से जुड़े अभियान में कार्रवाई करते हुए हमें शीघ्र सूचित करें। इधर पुलिस ने बच्ची के संबंध में सूचना देने वाले के लिए 50,000 रुपये का इनाम की घोषणा भी किया है। इस जानकारी के बाद एक बार फिर से हम गीत संगीत की दुनिया में लौटते हैं। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।

इस गीत के बाद एक बार फिर से हम जानकारी की तरफ लौटते हैं और जानते हैं कि दैनिक जागरण क्या कुछ कहता है, किन पर खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। रिटायर्ड कर्मी बना हैवान, पत्नी बेटे और बेटी को कुल्हाड़ी से काट डाला। जमशेदपुर के सीतघोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको इलाके में सोमवार सुबह एक रिटायर्ड कर्मी ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी, गर्भवती बेटी और बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपित ने तीनों पर हथौड़े से प्रहार किया। आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या में इस्तेमाल खून से सने हथियार भी मौके से बरामद कर लिया गया है। साथ ही दैनिक जागरण कहता है कि मैट्रिक रिजल्ट में फिसली हजारीबाग की साख, 59 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का रुकेगा वेतन। कभी राज्य में बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए पहचान रखने वाला हजारीबाग जिला इस बार झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की परीक्षा 2026 के परिणाम में पिछड़ गया। पिछले वर्ष जहां जिला राज्य स्तरीय रैंकिंग में 7वें स्थान पर था, वहीं इस बार फिसलकर 14वें स्थान पर पहुंच गया। जिले की इस गिरावट को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने 59 सरकारी विद्यालयों के शिक्षक के वेतन पर रोक लगाने का निर्णय लेने जा रही है। शिक्षा विभाग ने उन पर सभी विद्यालयों को कार्रवाई के दायरे में लिया है जिनका मैट्रिक परीक्षा परिणाम 94% से कम रहा। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण रंजन ने बताया कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक और विषयवार शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। जब तक संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होगा तब तक वेतन का भुगतान पर रोक रहेगी। सुविंदु सरकार का फैसला सीमा पर बाढ़ के

लिए 45 दिनों के भीतर देगी जमीन। यह कहना है दैनिक जागरण का। सुविंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही कई बड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला सीमा सुरक्षा को लेकर रहा। इसके तहत बीएसएफ को कटीले पार लगाने के लिए राज्य सरकार के अगले 45 दिनों के भीतर जमीन हस्तांतरित कर देगी। और दोस्तों, दैनिक जागरण कहता है कि पेट्रोल डीजल और गैस की खपत घटाने के उपाय खोजने में जुटे विभिन्न मंत्रालय। पश्चिम एशिया के हालात हर दिन करवट ले रहे हैं। युद्ध को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। इसका असर दुनिया के साथ ही भारत में भी पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पर भी पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल डीजल गैस खाद्य तेल उर्वरक आदि की खपत घटाने का आह्वान किया तो विभिन्न मंत्रालयों ने भी प्रधानमंत्री की मंशा को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, ये कहना है दैनिक जागरण का। सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महापूजा जलाभिषेक के बाद मंदिर के शिखर कलश के 11 तीर्थों के जल से अभिषेक किया। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम लेते हुए कहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने देश के स्वाभिमान से जुड़े प्रतीकों की उपेक्षा की। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी इसी से अछूता नहीं रहा। पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को झुकने या दबाव के आगे घुटने टेकने को मजबूर नहीं कर सकती। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को आयोजित अमृत पर्व समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। दनुआ घाटी में ट्रक ने 5 कार समेत 9 वाहनों को रौंदा, दर्जन भर से अधिक घायल। दनुआ घाटी की विभीषिका थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार की रात लगभग 9:30 बजे घाटी के एक के बाद एक 9 वाहन आपस में टकरा गए। देखते ही देखते रात के अंधेरे में पूरी घाटी चीख पुकार और अफरा तफरी से दहल उठी। दुर्घटना में 5 कारों के परखच्चे उड़ गए। उनमें बैठे 8 लोग ने मौत को बेहद करीब से देखा। सौभाग्य रहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। कई लोग वाहनों में फंसे रहे और अंधेरे में मदद के लिए चिल्लाते रहे। सूचना मिलते ही चोरदहा चेकपोस्ट से एसआई नीतीश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। बारकोड स्कैन करते ही बोल उठते हैं पेड़, सुनाते हैं अपनी पूरी कहानी। पेड़ सिर्फ छांव, फल और ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि अब अपनी जन्म गाथा और गुणों की कहानी भी स्वयं सुनाने लगे हैं। सुनने के बाद भले ही यह अटपटा लगे, लेकिन मयूरहन प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरौनी में यह अनोखा प्रयोग लोगों को आकर्षित कर रहा है। विद्यालय परिसर में लगे पेड़ों पर लगाए गए बारकोड को जैसे ही मोबाइल से स्कैन किया जाता है, वैसे ही उस पेड़ की पूरी जानकारी मोबाइल स्क्रीन पर खुल जाती है। कई पेड़ों की जानकारी तो बच्चों की आवाज में सुनाई देती है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विकास कुमार सिंह ने परिसर को ज्ञान और हरियाली का केंद्र बनाने के उद्देश्य से यह अभिनव पहल की है। दोस्तों, इस जानकारी के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में आइए लौटते हैं और सुनते हैं कुमार सानू और अनु मलिक को।

इस गीत के बाद खबरों में आगे भी बढ़ते हैं दोस्तों, और जानते हैं कि हिंदुस्तान अखबार क्या कुछ कहता है। सोने तेल पर सलाह से सियासी पारा चढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिमी एशिया संकट के मद्देनजर लोगों से ईंधन बचाने, सोना न खरीदने और विदेश यात्रा न करने की सलाह के बाद देश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी करार देते हुए सोमवार को कहा कि देश चलाना अब प्रधानमंत्री की बात नहीं। छिन्नमस्तिका का मंदिर में सुरक्षा, पुनर्वास में तेजी लाए कोर्ट। हाईकोर्ट ने रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में सुरक्षा और पुनर्वास में तेजी लाने का निर्देश दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने सोमवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान वर्चुअल रूप से मौजूद रामगढ़ डीसी ने अदालत को बताया कि मंदिर परिसर से हटाए 254 वेंडर को पहले अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया जाएगा, फिर अस्थायी दुकानें बना उन्हें बसाया जाएगा। बीबीजी रामजी कानून 1 जुलाई से होगा लागू। केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीबीजी रामजी अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा। बार्सिलोना में टीम चैंपियन फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने कैंप नौ में खेले गए मुकाबले में रियल मैड्रिड को हराकर 29वीं बार खिताब पर कब्जा किया। इन खबरों के बाद दोस्तों अब हम ऐतिहासिक घटनाओं के मद्देनजर जानते हैं कि आज के दिन यानी 12 मई को कौन सी प्रमुख घटनाएं भारत और विश्व स्तर पर घटी थी, और साथ ही आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन दोस्तों जोधपुर की स्थापना हुई थी। आज के दिन पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से 1666 में आंध्र प्रदेश में मुलाकात हुई थी। उनकी इंग्लैंड और हॉलैंड ने आज के दिन 1689 में लीग ऑफ एक्सबर्ग बनाया। क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने 1915 को जापानी नाव सुनुकी मारू पर सवार होकर भारत का उज्बेकिस्तान और कर्जिकिस्तान 1925 में स्वाधीन सोवियत गणराज्य बने थे। आज के दिन इसराइल और पश्चिम जर्मनी ने 1965 में शेयरों की नियुक्ति के लिए निजीकरण संबंध की घोषणा की थी। और आज के दिन मिस्र, सीरिया और सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया में शांति एकादश की इच्छा 2002 में स्थापित की। सऊदी शहर रियाद में अलकायदा के हमलों में 2003 में 26 लोगों की मौतें हुई थी आज के दिन। और चीन के सिचुआन में 2008 को आए भूकंप में 69,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। आज के दिन जजों की बहाली के मुद्दे को लेकर कई समझौते नहीं होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2008

1968 में साझा सरकार में स्वतंत्रता का निर्णय लिया था। अब दोस्तों जानते हैं कि आज किन प्रमुख व्यक्तियों का आज जन्मदिन है। आधुनिक नर्सिंग इंस्टीट्यूट के जन्मदाता एक नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म आज के दिन 1820 में हुआ था। प्रसिद्ध सिद्धांत कैथोलिक हिंदू दर्शन पर अध्ययन करने वाले कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी का जन्म आज के दिन 1875 में हुआ। एक सैद्धांतिक एवं आध्यात्म विषयों से जुड़े कुशल एवं विद्वान लेखक जय कृष्णमूर्ति का जन्म आज के दिन 1895 में हुआ। पश्चिम बंगाल के 21वें गवर्नर वीरेन जे शाह का जन्म 1926 में आज के दिन हुआ। भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश जी बालकृष्णन का जन्म 1945 में आज के दिन हुआ था। और आज के दिन जन्म 1954 में 13वें मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी का। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पेंडे का जन्म आज के दिन 1979 में हुआ। और आज हम प्रमुख व्यक्तियों के निधन की बातचीत करें तो हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन आज के दिन 1993 में हुआ था। और आज दोस्तों 12 में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी है। इस जानकारी के बाद एक बार फिर से हम गीत संगीत की दुनिया में आइए लौटते हैं।

0: नगीना फिल्म में भी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को। और दोस्तों, अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं, तो जाते जाते आज के सुविचार पर भी ध्यान देते हैं। आज आप इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करें कि हर चुनौती में एक सीख छिपी होती है। आज जो भी मुश्किलें आए उन्हें एक मौका की तरह देखें, जिनसे आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिले। और साथियों, इसके साथ साथ बढ़ने और खुद पर भरोसा करने का मौका भी मिले। आप हर दिन को थोड़ा मजबूत और प्रेरणादायक बनाएं। आप इस सोच के साथ आगे बढ़ें ताकि आपका आज का दिन और भी बेहतर हो। इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अपने दोस्त परमेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: Nine, eight, seven, six,

हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्स

0: यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10:59 हुए। अभी से लेकर दोपहर के 1:10 तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम को हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
2: विविध भारती से

0: Rang Tarang.
1: श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में।

हरिओम शरण की गई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

0: मीराबाई का ये भजन आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में। धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया। वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर
2: जाने के

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं, कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जहाँ भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर

अपनी जान, मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है।

फैज अनवर ने इस गाने को इस गाने को लिखा था सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

0: जुड़वा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस

0: पनवड़िया तो कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लौ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था, बप्पी लहरी का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ की ओर।

0: विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अरे

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जान

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सजा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मोइत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजें थी। और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की ओर। पहचाना ये गाना, बहुत सुना सुना सा है, जरा गौर से सुनिए।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में, उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर,
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत न बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम दो दुनी चार।

तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ। तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है।

तो भाई ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं, और वैसे शब्द तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चांद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छाओं में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम रात आसमान ख्वाब उम्मीद चांद टिमटिमाते तारे और सूरज। तो वैसे मैंने कहा ना कि शब्दों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप लोग।

कुछ और कमेंट हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, बड़े सुकून से लिखा है आपने ये कमेंट। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के दीप जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नज्म सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदें जैसे जमीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती हैं और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है वो मुश्किलों की पथरीली जमीन को चीर कर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत खूब। सच में साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा हो तो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तो भाई अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों कुछ रिश्ते आवाज़ों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं। एक और कमेंट हमारे पास आया है कि सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, ये प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है, वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई जब मोहब्बत सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, साथियों ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगातें हैं, हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं। ये सच में हमें मोहब्बत है इनसे, अगर ये न होते तो ये जहाँ ही न होता। चलिए अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक इस गाने का जिक्र मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया आपके इस कमेंट्स में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। लीजिए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।
4: These prestigious awards are presented.

0: समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द की। सीबीआई करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने जेटेट नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेसा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और जेएससीए ने प्रस्तावित झारखंड टी20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित की गई थी। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा रद्द की गई है। इस मामले की जांच के लिए एनटीए सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सीबीआई को सौंपेगी। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। खान विभाग ने बालू खनन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी की है। नई नियमावली में लीज भुगतान प्रणाली और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। नए प्रारूप के अनुसार लीज अवधि की गणना पंजीकरण की तारीख से होगी। इसके अंतर्गत लीज धारकों को अब भुगतान 3 किस्तों में करना होगा। इससे राज्य सरकार को 2,000 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष राजस्व मिलने की संभावना है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने राज्य सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
2: इस राज्य में अधिकांश लोग मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो अंगिका बोलते हैं। पूरा पलामू, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, रांची, पटिया, पूरा संथाल परगना लगभग सभी जगह बोले जाते हैं कि इस राज्य की अधिकांश जनता के साथ सरकार ने अन्यायपूर्वक निर्णय लिया है। सरकार को इस निर्णय को बदलना चाहिए और बदलना होगा।
1: वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि भाषा किसी क्षेत्र या राजनीतिक दल की नहीं बल्कि लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए।

0: झारखंड में भी हमको लगता है कि 80% 90% बिहारी है, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आप हर किसी को सम्मान दीजिए, लेकिन ऐसा निर्णय ना लीजिए कि किसी को ठेस पहुंचे और कोई आंदोलन पर उतरना पड़े, यहाँ नहीं तो सदन में।
1: इधर इस मामले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय लेगी वह अगली परीक्षा पर लागू होगा, वर्तमान जेटेट परीक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के वरीय नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के संरक्षण में संताल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। बोकारो परिसदन में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पिटरवार प्रखंड की उलगड़ा पंचायत में एक विशेष समुदाय के लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
2: ये अबुआ सरकार और आदिवासी के जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है। सरकार तो हर जगह उसी तरह हो रहा, पूरे संताल परगना डेमोग्राफी बदल रहा है, उसमें बोकारो भी हो चुका। अबुआ सरकार में आदिवासी का जमीन है सुरक्षित नहीं है, ना मां बहन का सुरक्षित।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को सही ढंग से लागू नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुवार सवालों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने पेशा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आयोग को शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी मांगी कि दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ता वैष्णवी के प्राप्तांक अधिक हैं या कम। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी

0: को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उत्पन्न स्थिति से निपटने और राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 आह्वानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आग्रह राजनीतिक नहीं है बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित है। झारखंड समेत देशभर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने कहा कि संबंधित विभाग और बैंकों से संपर्क कर दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि की जाएगी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स 1025 अंक गिरकर 74,990 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 299 अंक फिसल कर 23,526 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के मोरहाबादी इंडोर स्टेडियम में द्वितीय रांची जिला पेंचक सलार चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया गया। इसमें 170 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि पेंचक सलाट आत्मरक्षा, एकाग्रता और अनुशासन विकसित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। वहीं रांची जिला पेंचक सलाट एसोसिएशन ने बताया कि झारखंड के खिलाड़ियों ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए ने प्रस्तावित झारखंड टी20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अब 15 मई की रात तक अपनी बोली जमा की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 11 मई निर्धारित थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द की। सीबीआई करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने जेटेट की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और जेएससीए ने प्रस्तावित झारखंड टी20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्यार है तुमसे
1: कहा ना
0: कहो प्यार है तुमसे कहो प्यार है तुमसे
2: मोहम्मद रफी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है वाह भाई वाह एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हाँ जैसा कि

एक कमेंट में लिखा है कि भाई सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचे तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पयाम लाती है, आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। जरा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जाने

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सब ने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती थी लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो ही अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आँखों में गर्व की चमक को देख कर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद्र तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद्र तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार, और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर के चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का, जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई, खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है, ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है, ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है, ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है, तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है सुनिए ज़रा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सबने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद्र तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था। भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो आसमान नहीं मिलता। अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफर तय करते रहें। साथियों, बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ, अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं ज़रा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

एक साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूटकर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

कांच के। ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई 2016 की है। 2016 की शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है। संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सब ने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफ़र की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नजारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नजर रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

0: प्यार हुई।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन नर्सों के सम्मान में समर्पित है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली नर्सें केवल इलाज में ही नहीं बल्कि मरीजों को मानसिक सहारा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका धैर्य, करुणा और सेवा भाव उन्हें समाज में एक खास स्थान दिलाता है।

नर्स का कार्य केवल दवाइयां देना या मरीजों की देखभाल करना नहीं होता, बल्कि वे मरीजों के दर्द को समझती हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाती हैं। कई बार मरीज अपने परिवार से दूर होते हैं, ऐसे में ये परिचारिका ही तो उनका सहारा बनती है। कठिन परिस्थितियों में लंबे कार्य घंटों और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा का उदाहरण पेश किया था।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें ये सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी मानवता है। ये दिन हमें नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम उनके कार्य की सराहना करें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। एक छोटा सा धन्यवाद और सम्मान भरा व्यवहार भी उनके कठिन परिश्रम को सार्थक बना सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगी और उसके परिजन और डॉक्टर के बीच महत्वपूर्ण सेतु होती हैं परिचारिकाएं। आज के दिन हम नर्सेस को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला

0: केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधिर द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी।

0: प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

नजर को दिल, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूं फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई, दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है। इश्क जब बेहिसाब हो जाए

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से आई।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बउआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बउआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आइए ले चलते हैं आपको रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। राजधानी रांची में बिजली पानी के गंभीर संकट को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिलचिलाती गर्मी में जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए त्रस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प हर घर में नल जल जीवन मिशन, उसको फेल करने के लिए सारी ताकत इस सरकार ने लगा दी। मतलब जनता से पानी की दूरी बनी रहे। कहते हैं राजधानी में बिजली सरप्लस है, कहाँ सरप्लस है? 8-8 घंटे लोड शेडिंग है, ग्रामीण इलाकों में तो बिजली रहती नहीं। लाडर पूरी तरह ध्वस्त है, एकदम साफ। ये सरकार पॉलिटिकल टूरिज्म

0: विश्वास करती है। जनता से कोई लेना देना नहीं है।
1: राजधानी रांची के बाद दुमका में भी बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने जनाक्रोश रैली और धरना दिया। पूर्व मंत्री राज पलिवार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद और विधायक देवेंद्र कुंवर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बुनियादी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र जन आंदोलन कर कामकाज ठप किया जाएगा। उधर लोहरदगा में भी भाजपा ने विधायक शशिभूषण मेहता और जिला अध्यक्ष अजय कुमार पंकज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। नेताओं ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में राज्य के लोकायुक्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान लोकायुक्त ने राज्यपाल को राज्य की विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रगति से अवगत कराया। दोनों के बीच राज्य में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिहार आई बैंक ट्रस्ट की समीक्षा करते हुए इसका नाम जल्द झारखंड आई बैंक करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने, भूमि विवाद सुलझाने और सीएसआर फंड से आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने को कहा ताकि इसे राज्य का उत्कृष्ट नेत्र चिकित्सा केंद्र बनाया जा सके। गिरिडीह पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति पेट्रोलिंग दस्ते की शुरुआत की है। एसपी डॉ. विमल कुमार ने इस विशेष स्कूटी दस्ते को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि यह दस्ता मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के पास गश्त करेगा। किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं डायल 112 पर संपर्क कर सकती हैं।
2: महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत गिरिडीह में की जा रही है और इनका बेसिक जो नेचर रहेगा पेट्रोलिंग, जहाँ भी महिला कॉलेज है, जहाँ पे की कोचिंग सेंटर्स है, उन सभी जगहों पे हम लोग ना नहीं हो, छिड़काने की घटना नहीं हो, हम अपील करेंगे सभी महिलाओं से, पुरुष से भी जो इनकी सहायता लेना चाहते हैं, डायल 112 में भी आप संपर्क करें और हम लोग का जो जिला कंट्रोल नंबर है उसमें भी आप संपर्क करें।
1: रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से रविवार से लापता 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे का शव बरामद हो गया है। बच्ची का शव गाड़ी गांव इलाके के एक बड़े नाले से मिला है। लापता होने के बाद रांची पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में जुटी थी और सुराग देने वाले को 50,000 रूपये इनाम देने की भी घोषणा की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह जांच कर रही है कि मामला महज हादसा है या कोई साजिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और
2: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
2: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
1: भाई देखो कितनी गर्मी है।
2: हाँ?
1: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है, है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
2: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
1: जी
2: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया, जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खास तौर पर एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
1: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीजें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
2: बिल्कुल,
1: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
2: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए, तो एक हफ्ता दस दिन का समय निकाल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
1: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं।
2: हाँ।
1: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए तो घर में शांति है, सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
2: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं, और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं,
1: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
2: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
1: जी
2: हैं।
1: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
2: जी,
1: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में। कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
2: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है, तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए, तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे, और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
1: जी,
2: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
1: जी
2: है।
1: आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
2: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय

0: तब स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
1: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना,
1: और लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो

0: जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है, वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
0: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों, या आपके बागीचे में लगे हों, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हों, तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
1: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतजार कर रहे हैं, और जब वहां हमें कोई छांव नहीं मिलती, तो कई बार यहां वहां जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रस्ते की निशानी बन जाता है।
1: हाँ।
0: भाई तुम आगे वो रस्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है।
1: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती हैं।
0: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
1: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है
0: जी,
1: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं।
0: सही के बाहर
1: ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इस बार भी और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम। एक बार फिल्म से ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियां लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से

0: बचने के उपाय ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं। तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा माहेश्वरी
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी है, वो है विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक है, उनकी CEO है, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
3: क्या बात है।
2: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
3: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
2: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
3: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
2: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2000 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
3: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
2: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
3: हाँ,
2: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
3: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
2: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही।
3: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे।
2: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
3: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की 1 लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की 1 लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की 1 लोहार की यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशाही कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की 1 लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है, बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल, कि आप वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है, तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किससे कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें, और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज्यादा ही हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों के जो आप बात कर रही थी ना, कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ,
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
0: और
1: बड़ा हो
0: रहा है। इसी तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे, जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: साथ में पूनम करकेटा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिलचिलाती गर्मी में जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए त्रस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। भाजपा जिला कमेटी के आह्वान पर पाकुड़ में भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से सिद्धो कान्हो मुर्मू पार्क तक खाली घड़ा लेकर मार्च किया। नेताओं ने हेमंत सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग सिविल सर्जन कार्यालय में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य हर नागरिक का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना है, जिससे देश में कहीं भी इलाज आसान हो सके। लोहरदगा जिला समाहरणालय परिसर से उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने जनगणना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को जनगणना का महत्व समझाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सटीक आंकड़ों से ही विकास योजनाएं बनती हैं, इसलिए सभी नागरिक सही जानकारी देकर सहयोग करें। और राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज दोपहर मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हुई। इस बारिश से पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेलकूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेलकूद में,
3: शरारतों में,
2: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
3: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
3: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
2: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
3: जी।
2: और क्रिएटिव है
3: जी।
2: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
3: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
2: जी,
3: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
2: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
3: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
2: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूम कर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
0: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: गया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
2: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
2: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
2: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
2: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
2: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
1: लेकिन
2: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
2: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी,
2: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यास

0: प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी है
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे हैं।
1: जी जी जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर।
0: वाह।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो घर में इस वक्त शाम के 4:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से, राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर

0: होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ। क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
0: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
0: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
0: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
0: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
0: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
1: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, वहाँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।

0: गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे। चलो नदी में नहा कर आते हैं, फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहाँ भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो। देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तू कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ, हाँ।
4: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
4: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी जा,
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
4: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
4: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
5: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
4: आग बरसाती धूप।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
7: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
5: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
6: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
6: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।

0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे,
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी,
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए,
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया, और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं, और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
2: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिल्यांग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट।

0: का। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: NCERT अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और खुफिया तंत्र इस गंभीर खतरे को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। बिजली, पानी और साफ सफाई जैसे बुनियादी समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय वाटर टास्क फोर्स की बैठक की। इसका उद्देश्य भीषण गर्मी और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने 2 से 15 मई तक चलाए जा रहे विशेष जलापूर्ति शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया गांव के पास आज बालू लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। और जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। जलपुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहन के अपन खास कार्यक्रम में सब जन कर स्वागत हन। हम ये प्रकाश और आज हमारे जुड़े हथिन श्याम भाई। तो श्याम भाई तोहरो जोहार, स्वागत हो।
4: जोहार जोहार प्रकाश भाई और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के जोहार, प्रणाम और राम राम।
3: और श्याम भाई देखला कि गर्मी जो हो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए थो, लेकिन मौसम के जो मार हो बीच बीच में बारिश हो जाए थो, जेकर चलते जे गर्मा फसल जे लगल हो कहीं न कहीं पर फायदा होवे तो कहीं न कहीं नुकसान हो जाए थो, है ना। जेकर से का है कि जैसे बिलौती के अगर खेती लगल हो तो बिलौती खेती में थोड़ा सा मार हो जाए।
4: हाँ,
3: और जहां पर पानी वाला जे जहां पर जैसे कि खीरा हो गलो, ककड़ी हो गलो और सब जहां पर पानी के जहां पर जरूरत पड़ो है वहां वास्ते तो बेस हो जाए।
4: और देखा कि एक पर लेकर के हमें थोड़ा सा तैयारी भी करे के चाहिए प्रकाश भाई की। देखा जैसे कि बतेला की टमाटर की खेती है, ओकरा में ऊपर के पानी जो है से बहुत भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। देखा कि फूल झर जा है, चाहे पत्ता जो है से मरु लगु है। और बाकी बात ये देखा कि किसान भाई बहन सब जो लगल थी ना, अभी मकई लगल है, खीरा है, ककड़ी है, भिंडी है और झिंगी परोर है। तो सब ने कहा कि देखा ऊपर ला पानी तो नुकसान पहुंचाओ है, लेकिन है कि ऊपर से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाओ, नीचे जब नमी हो जाए तो हम इनके सब रो। लेकिन इनके देखा कि समय समय पर जो दवा के प्रयोग है वो हमेशा करते रहे चाहिए और ध्यान हमेशा देते रहे चाहिए।
3: देखा कि यह जागरूकता वास्ते तो हम इनके सरकार जोड़े भी बहुत सारा अभियान चालू है ना। और देखा कि आज जो है 12 मई है ना। 12 मई में कहा है कि हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनावल जाए है श्याम भाई। और काहे मनावल जाए है, कोई भी दिवस के काहे मनावो थी तो भाई मनवेल इसलिए जा है कि ओकर महत्व के समझल जा है। जैसे कि मान ले कि पौधा के सुरक्षा हो गलो, ओकर में रोग से बचाव के तरीका, कीट से बचाव के तरीका और पौधा के का महत्व है, हम इनके अपन पर्यावरण में ओकर जागरूकता लेल जे है हम इनके आज 12 मई के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनावल जा है। जेकर से हर किसान के कान में कम से कम और जेहन में ई बात जाए के चाहिए कि पौधा अगर स्वस्थ हो तो हम इनके उत्पादन बहुत अच्छा हो, तो एक उत्पादन अच्छा हो तो हम इनके आय के साधन जो है वो भी बहुत बढ़ते हैं,
4: बहुत बढ़ते हैं। और देखा कि पौधा का अगर सुरक्षित रखो ये प्रकाश भाई तो हमें देखा बहुत तरह के लाभ हुए है। जैसे कि कहा कि हमें द्वारा जो खाया जाए कि जो भोजन के है वो 80% तक जो है से हिस्सा हमें के जो है से पौधा के द्वारा मिलो है। और ऑक्सीजन जो कहा 98% जो है हमें के वही पौधा के द्वारा हमें के प्राप्त हुए है।
3: हाँ बेसकला। और सबसे जरूरी भाई श्याम भाई बता दियो कि जागरूकता मतलब ये हुआ है कि कम से कम किसान जो है अपन बीज जब बीज खरीदीन अपन खेत में लगे थी तो प्रमाणित दुकान से खरीदीन है ना। और उस बीज में कम से कम तुम्हारा विश्वास होवे के चाहिए, पहले भी तो लगा चुके हैं वह बीज के हमें 80% पे लगे भा। और नवा नवा बीज के जो हो कम जगह में लगवे के चाहिए ताकि जब जब इस साल अगर अच्छा से फलियत होते तो अगला साल हम फिर थोड़ा बेसी लगा देवे। लेकिन हमें कहा है कि जेकर में भरोसा हो वह बीज लगवे के चाहिए, फसल के हमेशा निगरानी में रखे के चाहिए। लोखहरे होलो या साइंस के बेरा होलो तो कैसे तू ध्यान देबा है ना, ओकर भी जानकारी रखे के चाहिए।
4: और देखा कि जैसे कि अगर हम बीज के बात करें प्रकाश भाई तो हम इनके बीज हमेशा जैसे बतला कि ओकरा चेंज नहीं करे के चाहिए, बदलाव नहीं करे के चाहिए। बदलाव जब भी हम करबे तो देखा कि अगल बगल के जो किसान भाई बहन सब ओकर अगर हम फसल देख लो कि कैसा पैदावार है, अगर अच्छा है तो हम इन फिर ओकरा चुनाव करिए। नहीं कि तू पूरा जो है नया बीज के चुनाव कर दला, पूरा खेत में अपन नया लगा दला, फिर ओकर पैदावार बढ़िया नहीं भलो तो तोरा जो है पूरा भारी भरकम जो है नुकसान के भी सामना कर।

0: और देखा कि एकर में ये भी एक तरह के बात हो है आज के दिन में भी कि कम से कम जो उर्वरक के जो उपयोग करो थे किसान भाई साहब का कि बड़े खेत में तो भाई उर्वरक जरूरत पड़ो है लेकिन एक सही मात्रा में बराबर मात्रा में हम इनके लगवे के चाहिए है न, और जैविक खाद के हमेशा प्रयोग करे के चाहिए और खासकर जैविक कीटनाशक हो गलो ओकर हमेशा उपयोग करे के चाहिए जेकर से कहा है कि हमके फसल भी अच्छा रहते हैं ओकर स्वास्थ्य भी अच्छा रहते हैं माटी के स्वास्थ्य बनल रहते हैं और खेत में साफ सुथरा और पानी निकाले के भी एक रास्ता होवे के चाहिए। तो इस सबके जो जागरूकता हो वो आज के दिन जेखा कि 12 मई आज के दिन हम जो स्वास्थ्य के रूप में हम इन मनाऊ ही ने तो ओकर में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में सबके बतवल जाए है हमके याद रखे के चाहिए कि हमेशा दिवस जो है वो सबके याद दिलाऊ है जे हम इनसे मन से जुड़ा रहो है अपन माटी से जुड़ा रहो है न। तो देखा कि अब जरूरी संदेश सुनो ही श्याम है जरूरी संदेश के बाद हम जानबे कि मोट अनाज के हम इन लगावे से का फायदा हुआ है साथे साथे ये भी जानबे कि रबी मौसम के में जे जे भी खेती है ओकर प्रबंधन कौन तरी करे के चाहिए जानकारी बहुत है लेकिन अब फिर सुनो ही एक जरूरी संदेश।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: पुतला बोल रहा
1: है पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा
2: परंतु सब ही डाले
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई मैं भी आते जैसे खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तो जरूरी संदेश के बाद हमें बढ़ हुई है श्याम भाई आगे भी हम के किसान भाई बहन सब हमेशा ध्यान से आपन कार्यक्रम किसान वाणी सुनने तो दिन है ना और कम से कम जानकारी के साझा करते हैं दूसर किसान से भी ताकि अनुभव के लेवे से और देवे से हमें के जानकारी बढ़ो है। आज हम बात करवे अधर की मोटा अनाज जेकर आजकल हमें को हुई है श्री अन्न के नाम से जानो ही
4: जानो ही। हाँ देखा कि बड़ी बढ़िया जो है से ये सवाल है प्रकाश भाई और देखा कि अभी हम इनके तरफ जैसे कहा कि भारत सरकार भी जो है से हम इनके जो है से प्रोत्साहित कर रहे थे कि मोटा अनाज जो है से खेती करे के चाहिए और देखा बहुत तरह से फायदा भी हुआ है और देखा कि मोटा अनाज के खेती में जो है का फायदा है कि कम पानी में भी जो है से वो बढ़िया तरीके से पैदावार हो जाए और कम खाद और कम मेहनत भी अगर हम जो है से लगू है और जगह से खेती में का हुए ना कि लागत भी जो है से बहुत कम अगर हमें पड़ो है और मोटा अनाज के खेती में सबसे बड़ा का है कि देखा कि 46 डिग्री सेल्सियस तक जो है से तापमान सहन करे के एक में शक्ति रहो है।
0: बेस कहला और देखा कि मोटा अनाज मतलब हो गलो भाई कि बाजरा हो गलो ज्वार मड़ुआ जो कहिए कोदो हो गलो सावा हो गलो चेना हो गलो इस तरह से बहुत सारा मोटा अनाज है और देखा कि सरकार मोटा अनाज के उगवे वास्ते किसान के प्रोत्साहित काहेल करो थीन बढ़ावा काहेल दो थीन भाई तो जानला कि मोटा अनाज में पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पावल जाए है और खासकर जे देखा कि मधुमेह रोगी जो शुगर पेशेंट हो गलो है ना और जो मोटापा जो बहुत बढ़ जा हो भी कंट्रोल करो थे नियंत्रित करो थी और कम करो थीन ये अनाज खाए से साथे साथ पाचन जो क्षमता हो हमी के पाचन के जो हमी के ताकत हो वो बढ़ो है और कम पानी जो तू बोलला कम लागत में ही खेती बहुत ही आसानी से हो जाए जगह से किसान जो है बहुत आसानी से करो थीन और अपन जलवायु में भी थोड़ा सा अगर कम बेसी हो लो मौसम तो भी सहन करके और अच्छा रहो है। अब बाजरा के मांग तो देखा कि बहुत ज्यादा हो
4: हाँ फिर देखा कि बाजार में मांग जो है से बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है अभी के समय में प्रकाश भाई का है कि आज के समय में देखा था कि स्वास्थ्य के प्रति लगभग आदमी सब जो है सब जागरूक हो गलती ना जेकर चलते मोटा अनाज के मांग जो है बाजार में ज्यादा अभी जो है से बढ़ गया है कहे कि देखा कि मोटा अनाज में जैसे बतेला कि बहुत तरह के एकदम प्रोटीन पावल जा है आयरन पावल जा है तो एक लेकर के देखा कि बहुत बीमारी के जो है से दूर भगावे के भी एकदम मोटा अनाज में जैसे शक्ति रो है। और अगर स्वास्थ्य के लाभ के बात करा था, मोटा अनाज खाए से जैसे शरीर में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, आयरन है, और फिर एक जगह से जैसे अभी बताइए कि अगर आदमी जैसे खाए से स्वस्थ हुआ, बहुत तरह की बीमारी दूर भी हुआ है, और ये फसल के अपना करके जैसे किसान भाई बहन सब जैसे 13% तक के कम पानी के भी उपयोग करके अपन आय में बढ़ोतरी भी कर सकते।
0: इसके अलावा देखा कि माटी परीक्षण जो हो, माटी जो परीक्षण कर ले ना, तो हर 3 साल में अगर

0: जांच करा ले बा और जांच करावे के बाद अपन माटी में मोट अनाज लगे बा तो मोट अनाज का है अपन मौसम और माटी के देखते हुए अपन काम करे से और वो अनाज के होवे से अब लोग जो तू कहला कि जागरूक हो गलथिन है स्वास्थ्य के प्रति हो गलथिन स्वास्थ्य अब सबके बहुत जरूरी हो गए अब कोई इना देखो थी कि कम दाम हो कि बेसी हो अगर ओकरा उनखा लगलो कि बेसी अच्छा हो और जैविक खेती बनल हो तो देखा कि कुछ दाम बढ़ा के भी ग्राहक जो हथुन से ले लेवो थी है ना अब बिक्री हो जाए और सरकार भी देखा कि आजकल ई नाम पोर्टल में भी किसान के एक जगह से दूसरा जगह में अपन सामान बेचे के सुविधा भी दलके है जेकर से उनका लाभ होले तो भाई तो रहले जानकारी कि मोटा अनाज की खेती करे के चाहिए और किसान के हमेशा प्रोत्साहन ले सरकार समय समय पर अच्छा अच्छा कदम उठाओ है तो लाभ लेते रहथिन अपन खेत बारी में अपन मोटा अनाज उगे थीन अब देखा कि चलो ये आज के जानकारी देने ऐसे ही में एक जानकारी लेके आई है एक सफल किसान हथिन राजेंद्र प्रसाद है ना वो बतेथिन भाई कि रबी मौसम में कौन तरी भंडारण करे के चाहिए और रबी मौसम मतलब कहे मतलब रबी मौसम जो फसल उगलो है ना वो फसल के कौन तरी अभी भंडारण करे के चाहिए क्या देखा कि अभी समय में कहो कि अब खेत बारी उजाड़ होके अब गर्म फसल लग गलो है
1: हाँ
0: लेकिन जो फसल तू निकाल लेना अपन खेत बारी में रबी मौसम वाला और कैसे रख रखाव करबा कैसे देखभाल करबा वो अपन अनुभव के साझा करथिन तो इनखा से हमें देने से बातचीत कर लिया थीन श्याम सुंदर रजक तो पहले इनखर के बातचीत के सुनिए
1: हाँ
2: श्रोताओं आज हम आए हुए हैं चौपारण प्रखंड के बेलाही पंचायत के बरवाडी गांव और यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक सफल किसान से और इनसे जानेंगे कि अभी जैसे कि देख रहे हैं कि रवि का फसल हो चुका है और फिर अभी गर्मा फसल भी अभी जो है हमारे किसान भाई बंधु सब के खेत में लगा हुआ है और कुछ फसल लगाने के तैयारी में भी है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रवि का फसल जो हो चुका है जैसे खसरा है मसूर है तीसी है और गेहूं है चना है तो इसका भंडारण हम लोग कैसे करेंगे क्योंकि हम लोगों को साल भर रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ जाता है और मान के चलिए जिसमें रेट कम है फिर उसमें हम लोग अपना घर में रख लेते हैं अगर रेट ज्यादा उसमें हम लोग निकालते हैं तो फिर कुछ बिहन के तौर पर भी हम लोग घर में रखते हैं तो ये सब चीज को देखते हुए हम लोग भंडारण कैसे करेंगे तो इन्हीं पे आज हम लोग बातें करेंगे कि भंडारण हम लोग को अपना तौर तरीका कैसे करना चाहिए अपना जो रबी फसल का जो बीज है उसको हम लोग सुरक्षित कैसे रखें तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनका नाम और इनका परिचय तो आप अपना सबसे पहले नाम और परिचय बताएं।
3: जोहार जय झारखंड मैं राजेंद्र रजक बलाई पंचायत बरवाडी के राजेंद्र रजक उच्च बसरिया थाना चौपारण जिला हजारीबाग रहने वाला
2: तो जी राजेंद्र जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपका जो रवि फसल हो चुका है तो रवि फसल में आप क्या क्या लगाए थे अपने खेत में
3: चना गेहूं खसारी मसूर और कराई उराई भी था मटर और तीसी सरसों सर
2: मैंने कि सारा फसल जो है आप अपना रबी फसल में लगाते हैं मैंने कि कहिए तो मिंजरी फसल जो होता है फसल मैंने सारा चीखा है कि देखते हैं कि आपका जो है केवाल मिट्टी है काली मिट्टी है और इस मिट्टी में रबी फसल भी जो है पूरा पुरजोर पकड़ता भी है तो रबी फसल जैसे कि अभी आपका तो मिसाइल चुरा हो चुका है सब आप घर ले आए हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मान के चलिए जैसे सरसों से शुरू करते हैं हम आपसे जैसे सरसों अगर हम साल भर रखना चाहें सरसों में क्या देखते हैं कि अगर उसको हम रख दिया तो उसमें थोड़ा जाली वगैरह भी लगने लगता है उसमें कीड़ी तो नहीं लगता है
3: नहीं सर कोई भी अनाज को पूरे एकदम सुखाइए पछिया हवा रहेगा
2: जी जी
3: हाँ पछिया हवा उसमें नमी नहीं रहना चाहिए एकदम अच्छा सुखाओ कीजिए वो आपका कोई खराब नहीं होगा
2: खराब नहीं होगा और जैसे कि देखते हैं क्या कि सबसे जल्दी चीनने वाला जो हम लोग के पास जो रबी फसल में है जैसे कि गेहूं हो गया फिर खसरा हो गया
3: मसूर हो गया सब क्या है
2: एक क्या है कि तुरंत देखते हैं कि अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो 8 दिन 10 दिन 12 दिन के बाद अगर आप रख दिया तो चीनना शुरू हो जाएगा तो इसको हम कैसे बढ़िया तरह से अपना घर में रखें
3: इसको जब तक आप कटिंग करवाए वहां से फिर थ्रेसर मशीन से लगवा के उसको फिर दाना निकाल लिए
2: जी
3: उसके बाद उसको अच्छा देखे उसको धूप में ही रखे धूप में ही अच्छा से एकदम सुखा दें सुखाने के बाद में उसमें एक भी कीड़ी नहीं लग सकती
2: सुखाने के बाद जो मन सुखाना कितना दिन तक चाहिए मन कब हम लोग को पता चल जाएगा कि दाना जो है अब सूख चुका है
3: और सूख जाएगा जाने पर आपका खुद ही पता चल जाएगा उसका आवाज ही अलग हो जाता है
2: मरे के
3: हाँ आवाज उसका एकदम ऐसा ही रहता है
2: जी
3: और नमी कम ही खत्म हो जाता है उस हाई नमी रह भी नहीं करता
2: नमी नहीं रहता है मैंने कही तो 2 दिन 3 दिन अगर
3: उस दिन रात रखा हुआ छत पर कोई दिक्कत नहीं है
2: अच्छा फिर उसको हम जैसे कि रखेंगे तो क्या उपचारित करके रखेंगे
3: फिर सूख जाता है 2-3 दिन हो गया
2: जी
3: ऐसे तो देहात में देखते हैं ज्यादा अंधेरिया में ही सुखाया जाता है बिहन के अनाज
2: जी जी
3: उसके बाद में नीम का पत्ता हो गया सिंधवार का पत्ता है जी, पत्ता कुछ थोड़ा सुखा दीजिए।

0: मसूर का जैसे आप बात किए तो मसूर हम रख दिए, जैसे कि इतना सिस्टम आप बताए कि सिंदवार का पत्ता हो चाहे नीम का पत्ता हो, अगर तह लगा करके अगर रख दिए हैं तो फिर हम जैसे उसको अचानक छोड़ देंगे साल भर बुना एक टाइम तक छोड़ देंगे कि फिर बीच बीच उसको देखना भी पड़ता है?
1: ना ना, अगर सही से आप सुखा दीजिएगा तो उसमें कुछ होगा ही नहीं,
0: कुछ होगा
1: नहीं, एकदम हमने उसको रख रहे उसी तरह दो तीन साल से, तो अपना ऐसे तो हम दवा डालते थे तो दवा से थोड़ा प्रभाव पता चला कि नहीं दवा तो खाने का चीज है, कभी खाया भी जाता है
0: जी,
1: तो उसमें थोड़ा तो फिर ज्यादा ये हम इसी तरह रख रहे हैं तो हमारा अच्छा रह रहा है भैया।
0: माने कि आपका कहना है कि जो रासायनिक दवा जो है उसको नहीं देना चाहिए ताकि बीच में मान के चलिए आपको घर
1: कभी
0: में
1: खाने का भी हो गया,
0: खाने का भी
1: बच गया तो उसको तो निकाल ही देना है मार्केट।
0: जी जी, मान के चलिए जिसमें हमारे घर में खत्म हो गया जैसे मसूर का दाल खत्म हो गया तो फिर उससे हम निकाल के मसूर का दाल बना सकते हैं, तो इसलिए उसमें रासायनिक दवा जो है सो नहीं डालना चाहिए काहे कि वो हानिकारक होता है शरीर के लिए। तो देखिए बहुत ही अच्छी आप बात बताए इंद्र जी की हम लोगों को जो है बढ़िया तरह से सुखा करके दो या तीन दिन आप जो बताए कि अंधेरिया रात में सुखाना चाहिए तो बढ़िया तरह से सुखा करके उसके बाद हम लोग को जो है ड्राम हो या तो फिर प्लास्टिक का जो बढ़िया बोरा हो जिसमें हवा नहीं प्रवेश करे उसमें जो है नीम पत्ता और सिंदूर का पत्ता तह तह दे करके उसको रख देना चाहिए ताकि उसमें कीड़ा वगैरह
1: नीचे भी डाल दीजिए या ऊपर भी, फिर गेहूं डाल दीजिए या मसूर डाल दीजिए फिर ऊपर भी दे दीजिए एक बार।
0: जी जी,
1: वो आपका फिर उसी तरह देखिएगा कभी भी ऐसा खोलिए कभी कि उसमें हवा नहीं प्रवेश करे, फिर ऊपर से कुछ कपड़ा उपड़ा बोरा वोरा प्लास्टिक दे दीजिए, ढक दीजिए ढक्कन से, बढ़िया पाइप रहेगा।
0: मतलब पैक ऐसा करना ताकि उसमें हवा ना
1: नहीं,
0: हवा ना जाए, आप बीच में अगर खोल भी रहे हैं तो उसको जो है फिर उसी तरह से पैक कर
1: दीजिए।
0: और अच्छा जैसे कि अगर चना हो गया चाहे तीसी हो गया तो तीसी में
1: तीसी तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसी में नहीं हो तीसी आप तो अच्छा से सूखा उस समय तो सूखता है तभी, बाकी मसूर हो गया मसूर में तो नमी रह जाता है, खसारी में नमी रह जाता है, चना है ये सब अच्छे से सूखा,
0: तीसी देख तो चिंता भी
1: नहीं
0: जैसे
1: सरसों ही सब चीने के बाद, बाकी उसमें भी नहीं सुखाइएगा तो कोई भी किच में रखिएगा तो उसमें ऊपर गिर सकता है वो,
0: मैंने खराब होने का डर है, मैंने चिपटा चिपटी हो जाएगा आपका जो खराब होने का डर,
1: काला टाइप का हो जाएगा भुआ टाइप का हो जाएगा।
0: जी जी, मैंने उसको भी बढ़िया तरह से सुखा करके फ्रेश करके उसके बाद
1: खाने से है कि उसका रोग दूर हो
0: जाता है, मैंने कि नमी नहीं रहना चाहिए उसमें, नमी रहेगा तो आपका खराब होने का डर रहेगा। और चना का कैसे हम लोग भंडारण?
1: चना उसी तरह चना जिस तरह का मसूर रख रहे जिस तरह का खसारी रख रहे हैं उसी तरह चना भी है,
0: उसी तरह चना भी है,
1: केवल सूखना चाहिए उसका आवाज ही लगेगा चूड़ी जैसा। तुम
0: अच्छा गेहूं में एक चीज देखते हैं राजेंद्र जी कि जैसे गेहूं आप रख रहे हैं कितनों सुखा लीजिए कुछ कर लीजिए लेकिन क्या होता है कि गर्दा छोड़ता है, एक साल के बाद अगर रखते हैं जैसे एक साल तक तो आपको दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद जो है उसमें गर्दा घुन टाइप से लगने लगता है, उसका उपाय क्या है?
1: सीजन खत्म हो जाता है फिर एक बार गेहूं को उसको निकाल के थोड़ा
0: धो दीजिए,
1: फिर धो के रखिएगा तो फिर भी वो खराब हो सकता है, फिर उसको सफाई करके फिर उसको ड्राम में डाल दीजिए बढ़िया से देख लीजिए कि मौसम या
0: जी जी जैसे कि ज्यादा दिन अगर हो गया
1: तो ज्यादा दिन रखने से
0: फिर निकाल के उसको उड़ा पुड़ा के जो बढ़िया तरह फ्रेश करके फिर रख सकते हैं, धो के
1: सफाई हो जाएगा उसका
0: तो फिर आपका जो है फिर कुछ चार पांच महीना जो है आपका
1: ठीक
0: रहेगा।
1: साल भर तो ऐसे गेहूं तो हर कोई रखता है खाता है।
0: आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी देखिए गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में अभी आप अपना घर में जो बगान लगाए हैं क्या क्या उसमें लगाए हैं थोड़ा सा इस पर भी हमको जानकारी चाहिए।
1: भिंडी है मूंग है अभी तो बहुत अच्छा फसल खाने के लिए तो आदमी तो लगाइए रहा है, परोर है झिंगी है करेल है कुठा है क्या है तो अपना
0: अच्छा जैसे कि आप लतेदार सब्जी भी लगाए एक बताए कि मूंग भी लगाए तो मूंग के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाई बंधु सबको जानकारी दें कि मूंग हम लोगों को कैसे लगाना चाहिए और उसे अधिक फसल कैसे लेना चाहिए।
1: मूंग तो अभी तो अगले महीना में तो मूंग लग गया अभी तो अब सीजन उसका लास्ट कर रहा है
0: जी जी
1: क्योंकि बरसात आ जाएगा फिर हम लोग निकाल नहीं पाएंगे खेत से। मूंग तो अभी तो बहुत अच्छा फसल है।
0: मूंग कौन सा महीना में लगाना चाहिए
1: जिसका खेत खाली है तो मार्च में भी लगा लिया अप्रैल में भी लगा लिया
0: मैंने कि मार्च महीना में मूंग लगाना चाहिए
1: मार्च अप्रैल या मई हो गया तो खाली खेत हो जाता है गेहूं।
0: मूंग में कितना पानी लमसम देना पड़ता है जैसे कि गर्मी के दिन में देखते हैं कि कितना कड़ाके का धूप रहता है।
1: पानी तो लेने वाला मूंग नहीं है तीन या चार पानी मूंग तो लेता है
0: तीन या चार पानी लेता है तो उसको अलमेली पटाना है कि छिड़काव करना है
1: अलमेली पटाना
0: अलमेली पटाना है
1: जहाँ पौधा उसका बड़ा हो गया तो उसका ऐसा पता रहता है कि उसमें नीचे धूप तो लगता ही नहीं है
0: मैंने कि पूरा एकदम छायादार हो जाता है एक बार पटाइएगा तो सप्ताह दिन मैंने कि
1: एकदम।
0: अच्छा कितना दिन में मूंग जो है गलना शुरू हो जाता है खेत से?
1: दो अढ़ाई महीने के बाद तो मूंग छोड़े लगता है
0: दो अढ़ाई महीने के बाद जो है निकलने लगता है। अच्छा मूंग का एक बार में तो कटिंग होता नहीं है लोग देखते हैं कि उसका तोड़ाई करते हैं
1: दो बार तीन बार टूटता है जिसके पास साधन नहीं तो एक ही बार में जड़ कबाड़ लेता है। मूंग से तो खेत बनता भी है उसका पत्ता तो मूंग के खेत ही में गिरता है
0: जी जी और उसमें जो है सो कहिए कि खाद

0: खाद के काम करता है उसका पत्ता।
1: खाद मैंने कहा तो अगर आप फसल चेंज कर करके अगर खेत में लगाते हैं तो आपका खेत भी जो है बढ़िया रहता है,
0: खेत बंजर से बच जाता है।
1: बच जाता है। अच्छा भिंडी और परोर बताए, परोर अभी आपका क्या उसमें फल लग रहा है कि फूल दे?
0: वो तो ज्यादा देर जल्दी तो ही परोर तो परोर हो गया आपका, भिंडी हो गया, ये तो आपका दो पत्ता के बाद तो तैयारी कर देता है।
1: तैयारी कर
0: हाँ भिंडी तो दो तीन पत्ता के बाद तो गर्मी का उसका तो
1: गर्मी के दिन में देखते हैं कि जल्दी उसमें फल लगने लगता है, दो तीन पत्ता जैसे आप बताए तो उसमें अब उसका सुविधा मैंने क्या दी, मैंने कि घोरान पर चढ़ाए हैं कि जमीन में ही रखे उसको नीचे?
0: ज्यादा तो जमीने वाला, अभी धूप काल है तो अभी जमीने वाला फलता है ज्यादा,
1: जमीन वाला घोरान पर के हवा इधर
0: लगता है तूफान कई एक बार आ रहा है तो उसको तो उलट पड़ जाता है। जमीन वाला तो अच्छा रहता है उसमें तो उसका नमी भी बना हुआ रहता है।
1: फूल को जो है अगर घोरान पर चढ़ाए तो झाड़ देगा,
0: झाड़ देगा उसका कई एक बार तूफान तो रहने देगा वो
1: जी। अच्छा लगाए कैसे है, जैसे कि उसके लगाने का जो तरीका है लतेदार सब्जी से परोर लगाए झिंगी लगाए तो लगाए कैसे उसको, उसका बीजा तैयार करके लगाए कि डायरेक्ट बीजा ही उसमें लगाया आप गाछी किए थे?
0: नहीं गाछी करना पड़ा, ये तो जिस तरह का ठंडा उसका गर्मी जब तक धावता नहीं है
1: जी जी
0: है ना, उसको तो आकुर करके ही छोटा छोटा गिलास जो चाय पीने वाला या ट्रे है
1: जी
0: है ना, उसमें हल्का मट्टी नमी करके उसमें फेंकल बीजा सब में डाल दिया, उसके बाद ही वो अपना
1: मैंने की पहले उसको आप मैंने गाछी किए पहले हाँ। गाछी करने के बाद फिर उसका जो है रोपाई कैसे हाँ। रोपाई कैसे किए उसमें उसका गड्ढा कैसे किया?
0: 10 फीट या 5 फीट के दूरी में यहाँ वहाँ या करेला हो गया या परोर हो गया झिंगी हो गया या तो आपका फूटा हो गया उसका 10 फीट 5 फीट के अंदर में यहाँ वहाँ हाँ गड्ढा कर दिया 2-4 दिन 1 सप्ताह के ताकि उसमें धूप और मट्टी उसका चेंज हो जाए
1: जी जी।
0: उसके बाद हल्का हल्का थोड़ा सा नमी कर दीजिए पानी देने के बाद में वो हल्का ही मट्टी रहेगा, वो पौधा लगाने के बाद तुरंत ऊपर पकड़ लेता है
1: हाँ। और फिर वो गड्ढा में जो गोबर मिट्टी मिक्स करके
0: हाँ, मिक्स तो आप
1: मिक्स करके डाल कर लगा दिए
0: डीपी वगैरह या नहीं तो आप गोबर का साधन है
1: मैंने कि मिक्स करके लगा दिए तो अभी आपका देखिए परोर झिंगी जो है सो आपका ठीक से निकल रहा है और फल भी रहा है। और भिंडी कैसे लगाए थे आप भिंडी?
0: भिंडी का वही थोड़ा उसका दाना 24 घंटा फूलने के देने के बाद में उसके बाद में फिर सूती कपड़ा में छान देने के बाद में उसका मट्टी है वहाँ गाड़ दीजिए टोटल अंकुर आ जाएगा। उसके बाद हल्का मट्टी को पानी पहले खेत तैयार है उसमें आप पटवन किए हैं और उसमें हल्का हल्का थोड़ा सा मतलब 1 इंची कोड़िया लगा हल्का मट्टी ज्यादा मट्टी देने के बाद निकलता नहीं
1: जी।
0: बस अपना
1: भिंडी जैसे आप लगाए होंगे जैसे आलू आलू लगता है उसी तरह से लगा कि भिंडी में तो मिट्टी का चढ़ाव मांगता है उसी तरह से आप चढ़ाव किए हैं ना तो भिंडी आपका अभी
0: हाँ 1 फीट के अंदर में
1: जी हाँ
0: 1 फीट दूरी इधर से
1: जी
0: उसका पौधा ही होता है
1: तो भिंडी अभी आपका जो है खेत से निकल रहा है
0: हाँ निकलना शुरू
1: मैंने कि अब खाना उसको जो है शुरू कर दिए हैं। तो चलिए राजेंद्र जी आप बहुत ही अच्छा जानकारी दिए हमारे किसान भाई बंधु को और आप अपना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। तो किसान भाई बहन ई हल्थिन राजेंद्र प्रसाद जो कि बरवाडीह गांव और चौपारण प्रखंड के रहे वाला हल्थिन ई अपन अनुभव के बतेलथिन हमिन के कि रबी मौसम के समय में जे फसल जे हमिन जब काटा लिए है तो उनका भंडारण कैसे करल जा सको है ना, वो फसल के भंडारण के पूरा जानकारी दलथिन और इनखा से हमें दिन से बातचीत कर ले हल्थिन श्याम सुंदर रजक। तो भाई ई जानकारी के बाद अब हमरा उम्मीद है कि किसान भाई बहन सब भंडारण के काम बेस ढंग से कर लेथिन। अब चलते चलते अब हम इन बात करो ये आज के बाजार भाव और मौसम के जानकारी के है ना।
3: हाँ तो देखा कि आज के जो बाजार भाव है प्रकाश भाई ओकरा पर हम थोड़ा सा चर्चा करो ये तो देखा कि अभी के समय में जो है लाल आलू के दाम जो बाजार में है से 20 से 25 रुपये प्रति किलो है और सफ़ेद आलू जो है से 18 से 20 रुपये प्रति किलो है और प्याज के दाम अभी जो है से 20 से 25 रुपये प्रति किलो है और फूलगोभी अभी देखा कि 30 से 35 रुपये प्रति किलो है।
2: पत्ता गोभी जो रहे 30 से 35 रुपये प्रति किलो, पटल 35 से 40 रुपये प्रति किलो, भिंडी 30 से 35 रुपए प्रति किलो, नेनुआ 25 से 30 रुपए प्रति किलो और कद्दू 25 से 30 रुपए प्रति किलो
3: और हरा मिर्च के दाम देखा भी बाजार में बढ़ल चढ़ल है प्रकाश भाई 100 से 120 रुपए प्रति किलो है और शिमला मिर्च के भी दाम अभी देखा ठीक ठाक है 80 से 100 रुपए प्रति किलो है और गाजर जो है से 20 से 25 रुपए प्रति किलो है, बीट अभी 40 से 50 रुपए प्रति किलो है और सेम जो है वो अभी 30 से 35 रुपए प्रति किलो है।
2: मुराय जे रहले 20 से 25 रुपए प्रति किलो, धनिया पत्ता 120 रुपए से 130 रुपए प्रति किलो और खीरा 20 से 25 रुपए प्रति किलो
3: और टमाटर भी देखा कि है 30 से 40 रुपए प्रति किलो और लाल साग जो है से 20 से 25 रुपए प्रति किलो और पालक साग जो है से 20 से 25 रुपए प्रति किलो भी है।
2: ये तो रहे आज के बाजार भाव का कि बाजार भाव के जानकारी रखे से किसान भाई बहन के अपन फसल के खरीद बिक्री करे में बहुत ही सुविधा हुआ है। क्या कि नजदीक जो मंडी हो वहाँ जा करके फसल के कैसे बेचना हो और पूरा जानकारी जो हम के रखे के चाहिए और किसान एक रखो भी थी और लाभ भी लेते है न। देखा कि कम से कम आज देखा कि आज हल्का फुल्का बारिश होलो कहीं कहीं पर है न, तो मौसम के उतार चढ़ाव बनल रहो है। मौसम के जानकारी रखे से अपन फसल में कीट हो गलो या तो पानी पटवन के सुविधा हो गलो या तो रक्षा करे के बात आ गलो कि कौन तरी अपन फसल के देखभाल कर सको ये, तो कर जानकारी मौसम के आधार पर ही करे पड़ो है न। तो कम से कम बता दिए कि कम से कम आज के तापमान हलै 23 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा आज के तापमान हलै 32 डिग्री सेल्सियस
3: और आर्द्रता जो हलै से देखा 60% है। और अगर हम कल के अगर बात करिए तो कल देखा कि मौसम के जनुमान है तापमान के जनुमान है वो है 33 डिग्री सेल्सियस और कम से कम जो है से 23 डिग्री सेल्सियस है।
2: और देखा कि कल भी जो है आर्द्रता 60% ही रहते और मौसम में देखा कि कम से कम हो लो कि सांझ के बेरा और लोखरे के बेरा में जो तापमान कम रहो है लेकिन ठीक जब 12-1-2 बजे बीच रहो है ना उसमें तापमान बढ़ जाए जेकर से किसान भाई बहन के कम से कम सुविधा रहे के चाहिए और गर्मी में जो फसल उगो है और जो फल रहो है सेवन करते रहते हैं अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखते हैं। चलते चलते अब हम बात कर रही है आज के समय में जब भी हमी के बात हो है तो माटी के स्वास्थ्य प्रबंधन कौन तरीके करे के चाहिए ओकर भी चर्चा हम करो ये श्याम भाई कि माटी जो रहलो आज के समय में माटी और बीज के जब दोनों एक मिलन हुआ है ना और सही तालमेल बैठो है तो फसल जो हो चौगुना उपज हो जाए और हमी के माटी के पैदावार भी अच्छा हुआ है ना।
3: तो एक में देखा कि सबसे पहला है कि मृदा प्रशिक्षण देखा कि हर 3 साल में जो है प्रकाश भाई मिट्टी के जैसे जांच करावे के बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाए है जेकर से पता चलो है कि हम इनके माटी में जो है से 12 महत्वपूर्ण मानक जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम और कार्बनिक कार्बन आदि जब बहुत तरह के जमीन के रोह है एक में हम इनके माटी में नाइट्रोजन सब वो हम इनके पता चल जाए कि हम इनके माटी में कौन पोषक तत्व की कमी है और कौन पोषक तत्व की मात्रा जो है से बढ़िया तरीके से है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है से देखा कि हम इनके बहुत जरूरी ही बनाना है। जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड रहता तो हम इनके जैसे बतले पहले पता चल जाए इनके कैसन माटी है और अपन खेत में खास करके देखा कि गोबर खाद चाहे वर्मी कम्पोस्ट चाहे जैव उर्वरक के ही उपयोग हम इनके करे के चाहिए
2: बिल्कुल बेस कला और साथ ही साथ फसल चक्र के भी अपनावे के चाहिए है ना। और एक माटी में एक फसल न उगावे के चाहिए ओकर से का हुआ है कि भाई नाइट्रोजन जो हो अपन जे माटी में बनल रहते से वास्ते फसल चक्र के भी अपनावे के चाहिए और पानी के प्रबंधन भी कर लेवे के चाहिए। अभी तो बेस कहला कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जे अपन माटी में बहुत जरूरी पड़ जाए लेकिन हाँ ओकर बराबर मात्रा में देवे के चाहिए ऐसा ना हो कि कोई ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाए। एक सुविधा अनुसार जो हो अपन मुताबिक में छिड़काव करे के चाहिए ओकर से आगे बढ़े के चाहिए। तो भाई तो ये तो रहले भाई के आज के जानकारी है ना। चलते चलते बता दिए आज के काका जानकारी हमें सुन लिए जान लिए तो पहले बता दिए कि आज जो है 12 मई अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनावल जाए ओकर बारे में चर्चा कर लिए है ना। साथ साथ देखा कि फसल जो हो रबी फसल में जो हम इनके उगो है ना फसल ओकर भंडारण कौन तरीके करे के चाहिए ओकर जानकारी ले लिए। साथ ही साथ देखा कि मोट अनाज जो है मोटा अनाज के कैसे हमें खेती करे के चाहिए और क्या फायदा हो ओकर बारे में जानकारी दे लिए। चलते चलते हमीन
3: फिर देखा कि मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन पर भी हमीन बात कर लिए। तो उसी तरह देखा कि हमें जितना भी अपन कार्यक्रम किसान वाणी में ऐसे बारीक बारीक बात कर लिए अब हमीन के जैसे कार्यक्रम किसान वाणी से जायक भी बेरा हो गया है।
2: तो एक साथ है कि दोबारा फिर मिलवे यही उम्मीद के साथ अपन साथी प्रकाश के
3: और श्याम के
2: अनुमति दथिन
3: जुहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 5:33 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुन रहे तमाम श्रोताओं को जोहार प्रणाम नमस्कार श्याम की तरफ से। और आज हमारे साथ में है प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपको भी कार्यक्रम खेती बाड़ी में स्वागत करते हैं। जोहार प्रणाम नमस्कार।
1: जोहार। और खेती बाड़ी सुन रहे आप सभी श्रोताओं को प्रकाश की ओर से नमस्कार, स्वागत है। श्याम जी, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। और श्याम जी, जैसे कि देखते हैं कि हमारे जो गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पर हमारे जो किसान हैं, वैसे वैसे जगह में भी जाके अपने खेती बाड़ी का कार्य करते हैं और दिन भर खेतों में लगे रहते हैं। उनकी मेहनत देखते ही रंग लाती है और खेतों में हरियाली उनकी मेहनत का एक गवाह होती है कि कितनी शिद्दत से वे खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। क्योंकि हर चीज का विकल्प है लेकिन अनाज का कोई विकल्प नहीं है। पेट की आग जो है अनाज ही बुझाता है और किसान की मेहनत वहां रंग लाती है।
0: जी। और देखिए कि आप अगर बाजार में भी घूमते होंगे प्रकाश जी, तो आप देखते होंगे कि जितना भी सब्जी आपको मिलेगा एकदम बहुत एकदम हरा भरा एकदम सुंदर सुंदर अभी के समय में मिलेगा। और गर्मा फसल जैसे कि जो भी है लतेदार है या तो फिर देखिए आपका खीरा ककड़ी तरबूज है, अभी देखिए कि सब ठंडा ठंडा सब्जी जो आपको मिलेगा और बहुत ही सुंदर सर सुडोल मिलेगा। तो एक कारण है क्या कि हमारे किसान भाई बंधु सब्जियों से बहुत ही मेहनत करते हैं और बाजार में जो है उपलब्ध करते हैं। और देखिए कि समय पर अगर कोई भी सब्जी अगर आ जाता है बाजार में और अगर बढ़िया मात्रा देखे उसका दाम भी जो है सो अच्छा खासा रहता है और रहना भी चाहिए। क्या है कि हमारे किसान भाई बंधु सब देखिए अभी गर्मी के दिन में जो है सो कितना मेहनत करते हैं, पानी की समस्या हो जाता है। हमारा झारखंड प्रदेश है, आप बहुत जगह से देखते होंगे कि बहुत दूर दूर से जो है पानी का ला करके पटवन करते हैं, तो मेहनत बहुत ही रहता है। मगर है कि हमारे किसान भाई बंधु से एकदम पूरा कहिए तो मेहनत करते हैं और उस पर लगे हुए हैं।
1: तो भाई उनकी मेहनत को सलाम रहती है ना। अपने कार्यक्रम के माध्यम से ही खेतीबाड़ी के तरफ से हमेशा किसानों के उजागर के लिए, उनके भविष्य के लिए और उनकी बेहतर योजनाओं की जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं ताकि उन्हें हमेशा सुविधा हो। और वैसे भी सरकार तरह तरह की योजनाओं को लाती है ताकि उन्हें फायदा हो। यदि ऋण का दिक्कत होती है तो हर गाँव में छोटे छोटे समूह में स्वयं सहायता समूह है, वहां से ऋण लेते हैं। यदि बड़े ऋण लेना होता है तो वे जाकर बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। उद्योग खोलना रहता है तो उद्योग विभाग से बहुत सारे लोन जो है 25 लाख तक का लोन मिलता है, वहां जाकर आवेदन दे सकते हैं। उन्हें जो भी उद्योग खोलना तो वो खोल सकते हैं। तो बहुत योजना बहुत तरकीब है। लेकिन हाँ, किसानों के मन में एक उद्देश्य होना चाहिए और कुछ कर गुजरने की एक क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, है ना। तभी जाके कोई कार्य आसानी से हो पाता है। फिलहाल बातें आगे भी करेंगे, क्यों ना अपने श्रोताओं को पहले गीत सुना लेते हैं।
0: जी हाँ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ तो श्रोताओं, बात कर रहे थे कि गीतों की और जरूरी संदेशों का, तो दोनों का सुनने के बाद हम बात करते हैं कि गांव का विकास की धारा कैसे बहती है, कैसे जो है शहर से काली सड़क जो है गांव की तरफ ले जाती है, और गांव में कई तरह की सुविधाएं दी जाती है सरकार के जरिए, है ना
2: जी।
1: यदि पानी की बात करते हैं तो अभी दूर दराज की बात करते हैं तो लगभग जगहों में अब है जो जल मीनार लग चुके हैं। जल मीनार ऐसे जगह पे लगते हैं जहां पर बहुत सारे घर जो है लाभुक जो है लाभ ले सकते हैं,
2: हाँ,
1: वहां दिया जाता है। शौच के लिए पहले ही शौचालय के रूप में उन्हें एक छोटा सा शौचालय का ही निर्माण करवाया गया है ताकि उन्हें भी सुविधा हो जाए, ताकि घर पे ही सारा जो है अपना व्यवस्था बनी रहे। खासकर साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि हर तरह की योजना होती है, यदि वृद्धा पेंशन हो या तो इसके सब बच्चों का विकास की बात करते हैं, तो हर तरह के विकास जो है आसानी से हो पाता है, और खासकर खेती किसानी के लिए जमीन के बारे में भी सोचना होता है। अच्छा श्याम भाई, हम बात करते हैं कि यदि एक घर में चार भाई हैं, यदि किसी के पिता के चार पुत्र हैं, तो देखिएगा कि जमीन का टुकड़े टुकड़े में बंटवारा हो जाता है।
2: जी जी जी।
1: बाद में पता चलता है कि ना रसीद रह पाता है, ना उसके पास खतियान है, ना कोई, ना वे ऑनलाइन रसीद कटवा पाते हैं। तो इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा कि यदि आपके पास जमीन है, खतियान है, सब कुछ है, तो ऑनलाइन जरूर रसीद कटवाएं।
2: जी हाँ, देखिए इसमें आपको जैसे कि जैसे जैसे मैंने कही देश दुनिया चल रहा है उसके पीछे आपको चलना ही होगा। जैसे जैसे कि मान के चलिए पहले तो ऑफलाइन सारा रसीद कटता था, तो अब उसको जो है धीरे धीरे सारा जमीन का पेपर जो है ऑनलाइन पे चढ़ा दिया जा रहा है, ताकि उसमें कोई किसी तरह का फोर्जरी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो हम किसान भाई बंधु सबसे आग्रह करेंगे कि जिनका भी जो है सो जमीन जो है सो ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, तो जाकर के अपना ब्लॉक में जो है सो सीईओ से संपर्क करके ऑनलाइन जरूर चढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आगे भविष्य में आपको दिक्कत होने, आपके बाल बच्चे को कभी दिक्कत हो।
1: होती है यू कि श्याम भाई हम बोल देते हैं कि ये जमीन हमारी है,
2: जी जी,
1: मुझवानी बोल देते हैं, आने समय में लगभग बोलता रहता है कि कुछ हो नहीं पाता, लेकिन जब भी सरकार द्वारा या तो खुद से भी कुछ उसमें कुछ करना भी चाहिएगा, तो कहीं ना कहीं कागज की बात आती है ना
2: जी जी।
1: तो उसमें कहा जाता है कि आपके पास क्या कागज है, क्या इसके प्रमाण है कि ये आपकी जमीन है, तो उस स्थिति में आपको कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम तो कहेंगे कि यदि आपके पास समय है और चाहते हैं बेहतर अपने भविष्य के बच्चों का उज्जवल भविष्य दें, तो अपने आपके पास जो भी जमीन है उसका जो भी टुकड़ा है, तो कहीं न कहीं आप अपने नाम करवा लें, है ना, या तो उस जमीन का रसीद कटवा लें, वंशावली दिखा दें कि हाँ भाई ये हमारे है, इससे हमारी जमीन होती है। और यदि टुकड़े टुकड़ों में यही खेतीहर जमीन है, तो क्या कीजिए कि एक साथ खेती करें, है ना
2: जी जी।
1: उससे क्या होगा कि खेती आसानी से हो जाएगी, और छोटे छोटे छोटे रूप में जब टूट जाता ना खेती
2: जी जी,
1: तो किसी को करने की इच्छा नहीं होती है।
2: देखिए उसका भी एक उपाय है प्रकाश जी, जैसे मान के चलिए हम, अगर मेरे पास मान के चलिए 25 कट्ठा जमीन है, और मेरा अगर मान के चलिए 4 गो बच्चा है, तो उसको हमको बांटना है, तो 25 कट्ठा एक जगह तो मेरा नहीं है, कहीं 2 कट्ठा है, कहीं 4 कट्ठा है, कहीं 10 कट्ठा, कहीं 8 कट्ठा, मिला करके 25 कट्ठा है। तो आजकल के क्या करते हैं लोग कि जहां 2 कट्ठा वहां भी 4 टुकड़े कर दे रहे हैं, जहां 3 कट्ठा वहां भी 4 टुकड़े कर दे, जहां 8 कट्ठा वहां भी 4 टुकड़े कर दे रहे हैं। तो वैसा मत कीजिए, देखिए उसमें क्या कीजिए कि 25 कट्ठा को जो है सो डायरेक्ट 4 से भागा दे दीजिए आप, उसमें देखिए कि एक भाग में कितना जा रहा है, तो उसी हिसाब से आप बांट दीजिए। उसमें क्या होगा कि आपका 4 भाग में जो खेत बटेगा वो बड़ा बड़ा रहेगा, अब जहां भी रहेगा वो एक भाग मिलेगा तो वहां बड़ा रहेगा। तो इस तरह से अगर बंटवारा आप करेंगे तो आगे चल के मान के चलिए जैसे भी समय चल रहा है, जैसे पहले हल बैल से खेती होता था तो खेत जोताने में आसान हो जाए, छोटा रहे या बड़ा हो जोता जाता था, मगर अब देखिए ट्रैक्टर से जब खेती हो रहा है तो आपका छोटा खेत जो है मान के चलिए 1 डिसमिल 2 डिसमिल का जमीन है, तो उसमें जोतने में देखिए आपका समय भी ज्यादा जाएगा, अच्छा से जोताई भी नहीं होगा। तो इस सब चीज को देखते हुए जो है बंटवारा कीजिए, और आपका आपके लिए मुझे अच्छा रहेगा ये।
1: तो ये तो रहा खेती किसानी से, क्योंकि किसान हमेशा अपने जमीन से जुड़ा रहता है, और जमीन उनके लिए बहुत ही कहा जाता है कि एक अपने जीविकोपार्जन का एक जरिया होता है।
2: जी, जी, जी।
1: तो हम तो चाहेंगे कि अपने जमीन की रक्षा स्वयं करें और अपने जागरूक रहें, अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें। तो अब चलते हैं जानकारी की तरफ, और वैसे में जानकारी लेकर के आए हैं कि व्यवसायिक खेती इस वक्त कैसे हो सकती है, और जो बता रहे हैं सुनील यादव जो कि जुलजुल गांव सदर हजारीबाग के रहने वाले हैं।
2: जी, और भेंटकर्ता जो है जो हमारी तरफ से जो बातचीत कर रहे हैं वो है प्रकाश कुमार राणा,
1: तो सुनते हैं ये जानकारी।
2: जी हाँ
3: श्रोताओं, हम आज आ पहुंचे हैं जुलजुल गांव है, और आज हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान मौजूद हैं, नाम है इनका सुनील यादव। इनके खेत पे खड़े हैं और चारों तरफ देख रहे हैं कि मल्चिंग विधि से खेती होने वाली है, और मल्चिंग विधि से खेती हो भी रही है, इसकी तैयारी भी चल रही है, साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई विधि का भी उपयोग किया जा रहा है। गर्मी का समय चल रहा है, इस वक्त किन किन फसलों की खेती कर रहे हैं, कैसे खेती बारी से जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी सुनते हैं सुनील यादव जी से। तो आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, नमस्कार।
4: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए।
3: सुनील जी, हम आपके खेत पे खड़े हैं और चारों तरफ हम देख रहे हैं कि अभी भी जो काली काली जो सीट है, मल्चिंग विधि की जो तैयारी चल रही है, और काली काली जो पाइपें हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए तैयार हैं, है ना। हाँ। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप युवा हैं, तो युवा होने के नाते आपका रुझान जो है खेती बाड़ी की ओर आया, तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में?
4: खेती बाड़ी में हमारा मतलब बचपन से ही शौक था, जैसे घर में पापा खेती करते थे तो शुरू से ही लगता था कि खेती मतलब अच्छा लगता था, ऐसा मन में ऐसा था कि खेती करने से भी मतलब अच्छा लगता था।
3: पहले की जो खेती बाड़ी की विधि थी और अब में बहुत अंतर है, कितने एकड़ में आप प्रयास कर रहे हैं खेती करने का?
4: अभी तो 15 एकड़ में लगाए हुए हैं, और अभी आगे और भी बढ़ाने का प्लान है।
3: अभी जो है गर्मी का समय चल रहा है, इस वक्त कौन कौन सी फसलों की खेती करने के लिए आप सोच रहे हैं और लगा भी दिए हैं?
4: अभी तो हम लोग लगभग 2 एकड़ में तरबूज लगाए हैं, और अभी आगे बैंगन रोपाई हो रही है उसकी।
3: तो ये 15 एकड़ में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम मेरे सामने ही नजर आ रही है ये काली काली सीट जो मल्चिंग विधि से खेती होती है, तो इसकी तैयारी कैसे करते हैं, और खेत की जुताई हो या मल्चिंग विधि का जो लगाने का जो सिस्टम है, या तो जो पाइपे है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का जो पाइप है, इसके बारे में बताइए, क्या तरकीब आपके दिमाग में आया था?
4: तरकीब तो ऐसा कोई नहीं है भाई, ये टेक्नोलॉजी है जो जैसे जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ये मल्चिंग और ये ड्रिप से खेती किया जाता है। यहाँ पहले सोचते थे कि ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में भी खेती किया जा सकता है।
3: और ये जो मल्चिंग विधि से खेती कर रहे हैं, इसमें पौधों को क्या फायदा हो पाता है, आपको क्या फायदा होता है?
4: इसमें मल्चिंग से ये फायदा होता है कि अगल बगल में जैसे घास खरपतवार जो होते हैं वो नहीं होते हैं, और इससे एक अंदर में मिट्टी के अंदर में एक एनवायरमेंट बनता है।
3: अच्छा,
4: जो पौधों के लिए जड़ के लिए फैलाव के लिए अच्छा होता है।
3: ये जो पाइप दिख रहा है, ये पाइप को कहाँ बिछाते हैं आप?
4: जमीन में मल्चिंग के नीचे, ऐसा मेन लाइन जमीन के नीचे गाड़ के और फिर मल्चिंग के नीचे इसको बिछाया जाता है।
3: ये मल्चिंग विधि से जो खेती किया, साथ ही साथ जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का अपनाया है, ये कहाँ से आपको प्राप्त हुआ था या कैसे लगाए थे आप?
4: ये तो गवर्नमेंट का स्कीम है, वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप कैश में भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग आधा कैश और आधा ऐसा गवर्नमेंट स्कीम के तहत लिए।
3: सरकारी सुविधाओं को लाभ लिए हैं, और इसके तहत आप ड्रिप इरिगेशन का पूरा सिस्टम बना के रखे हैं, और ये जो पानी का जो क्या है, बोरिंग करा है या कुआं का है?
4: बोरिंग का पानी है।
3: बोरिंग का पानी है ना, तो आप सिंचाई का काम कर लेते हैं और मल्चिंग विधि से होता है। मल्चिंग विधि से प्लास्टिक कहाँ से लाते हैं?
4: ये प्लास्टिक तो मार्केट में यहाँ पे स्ट्रीट कॉर्नर से ले लेते हैं, कहीं भी आपको कहीं भी मिल जाएगा।
3: तो खेत की जुताई कैसे करते हैं आप?
4: खेत की जुताई पहले इसकी तैयारी होती है, बहुत अलग अलग ट्रैक्टर से, अलग अलग हल से।
3: अच्छा।
4: इसके बेड बनाए जाते हैं, जैसे पहले रोटर का इस्तेमाल करते हैं, फिर कांटा का, इसी तरह कम से कम 5-10 बार इसे जुताई करके अच्छा से इसको बेल्ट बनाते हैं।
3: और मिट्टी में उर्वरा क्षमता बनी रहे, इसके लिए सबसे पहले इसमें क्या डालते हैं?
4: इसमें तो हम लोग तो बहुत ज्यादा इसमें गोबर डालते हैं, गोबर खाद।
3: अच्छा।
4: हम लोग बहुत ही ज्यादा गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जितना ऑर्गेनिक हो सकता है उतना ऑर्गेनिक करने की कोशिश करते हैं।
3: चलिए, जैविक खेती की ओर आपका रुझान है, और जैविक खेती के लिए आप गोबर का इसमें मिलाते हैं, गोबर से मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बनी रहती है ना। तो सुनील जी देखिए, अभी गर्मी का समय है और मौसम भी बहुत गर्म है, तो इस वक्त जो है इस मल्चिंग में क्या लगाइए, कौन सा पौधा इसमें लगाइएगा?
4: अभी इसमें तो बैंगन के रोपाई अभी करेंगे।
3: जब हम बैंगन की रोपाई की बात करते हैं, रोपाई की बात कर रहे हैं, तो ये जो बीज है,
4: हाँ।
3: तो आप लोग क्या करते हैं, बीज लगाते हैं या तो पोटरे का जो पौधा होता है उसको लगाते हैं?
4: हम लोग तो ऐसा ग्रीन हाउस से गाछी पहले खरीद के लाते हैं, उसके बाद लगाते हैं।
3: तो क्या अपना बीज देते हैं उनको कि वे ही अपना बीज लगा के देते हैं आपको?
4: अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है, जैसे तरबूज में आप दाना दे के और वहाँ से वो सीडलिंग तैयार करके देगा। अच्छा। लेकिन जैसे बैगन का है तो इसको खरीदना पड़ता है गाछी, इसका ग्राफ्टेड गाछी आता है छत्तीसगढ़ से, वहाँ से लाते हैं हम लोग।
3: अच्छा, इसमें कुछ और भी बात करना चाहेंगे कि यदि जो किसान जो है सीधा बीज रोपाई कर देता है उसमें क्या दिक्कतें होती हैं, और आप ये जो पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, नर्सरी से लाने के लिए बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या फायदा नजर आता है?
4: फायदा नुकसान तो दोनों का है, लेकिन ज्यादातर किसान चाहता है कि वो गाछी लगाए, लेकिन जिसके पास पैसे की कमी होती है वो सीधे डायरेक्ट दाना भी डालते हैं।
3: पौधे लगाने से ये फायदा होता है कि हमें दिखाई दे देता है कि कौन सा पौधा बढ़वार हुआ है या कौन सा पौधा मर गया, और समय भी कम लगता है। अब बीज का निकलते निकलते भी बहुत सारा समय ले जाता है, मतलब नहीं निकला तो मेरा समय भी गया और वो जगह भी चला गया, है ना। अब जानना चाहते हैं कि इसमें कौन सा पौधा लगाएगा, अभी बात कर रहे थे।
4: अभी इसमें बैंगन का रोपाई होने वाला है एक दो दिन में।
3: अच्छा, बैंगन की रोपाई होने वाली, तो बैंगन की रोपाई के बाद क्या क्या इसमें आप प्रक्रिया को अपनाइएगा, कैसे बैंगन की तैयारी में जुटिएगा, सो बता दिए, अपना अनुभव को साझा कीजिए हमारे किसान भाइयों से।
4: बैंगन का तैयारी तो बहुत ही, मतलब इसमें बहुत देखरेख करना पड़ता है। इसमें शुरू से आपको लगाने के तुरंत बाद इसमें देखना पड़ेगा कोई बीमारी तो, कोई फंगस या कोई इंसेक्ट तो नहीं लग गया। उसके बाद इसको सपोर्ट के लिए बांस गाड़ना पड़ेगा आपको, उसके सपोर्ट के लिए रस्सी से बांधना पड़ेगा, मतलब इसको बहुत बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, इसको बहुत देखभाल करना पड़ेगा, हर एक दिन आपको देखना पड़ेगा इसको।
3: सिंचाई का काम कब कब कीजिएगा और क्या देखभाल जिस तरह से बता रहे हैं क्या कीजिएगा आप?
4: सिंचाई तो हर दिन चलेगा, जैसे इसके जरूरत के हिसाब से हर दिन 20 मिनट चाहे आधा घंटा 40 मिनट इसका रोज हम लोग देते हैं।
3: इस समय जो है सुबह और शाम की का जो समय होता है उसी समय आप सिंचाई का काम कीजिएगा ना?
4: सुबह या शाम में इसका पानी खाद जो है सुबह या शाम में चलेगा। अभी तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया मौसम, तो अभी लेबर भी दोपहर में काम नहीं करता है और कोई पानी वाले में नहीं चलाते।
3: जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग किए, तो आप यदि बात करें खेती के फायदे की बात करते हैं तो इसमें अगर लागत कम लगती है तो मुनाफा ज्यादा होता है ना, तो लागत कम करने के लिए आपके पास क्या क्या व्यवस्था है?
4: लागत कम करने का इसमें है कि एक बार आपको सिस्टम पूरा मैनेज करना पड़ेगा, सिस्टम से लगाना पड़ेगा, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा।
3: हाँ, शुरुआती दौर में
4: शुरुआत में पैसा इसमें ज्यादा लगेगा, उसके बाद थोड़ा इसमें कम लगेगा, जैसे इसमें घास खरपतवार होगा नहीं तो थोड़ा कम लगता है खर्च, लेबर कम लगता है इसमें।
3: मजदूरी अगर कम लगता है, अगर खर्च कम होगा तो हमारा फसल जो है वो फायदेमंद होगा, है ना। तो अब जानना चाहते हैं कि बैंगन की खेती कितने दिनों में तैयार हो जाएगी?
4: बैंगन तो अभी अगर रुपाए हो गया तो 50-55 दिन में इसका हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा।
3: शुरू हो जाता है। और बैंगन का जो बढ़वार है, देखभाल में जो भी चीज बताएं, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है?
4: बीमारियां तो इसमें बहुत तरह की आती है, जैसे इसके इसमें अलग ही तरह के कीड़े रहते हैं जो प्लांट के स्टेम में घुस जाते हैं उसको, और इसके मतलब जो कीड़े होते हैं बैगन में वो सिस्टम में स्टेम में घुस जाते हैं, तो उसको मारने के लिए बहुत ही आपको सावधानी रखना पड़ेगा।
3: क्योंकि देख रहे हैं कि बगल में बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं ना, कहीं दाग भी नहीं है, क्योंकि ये जो जमीन से ऊपर है प्लास्टिक ऊपर है तो देखने में भी सुंदर लग रहा है बैंगन, है ना। बगल में तरबूज, और
4: तरबूज का अभी तो बारिश हुआ था बहुत ही ज्यादा अभी कुछ दिन पहले, तो उससे तो नुकसान हुआ, और जो पत्थर बारिश हुआ पत्थर का बर्फ का उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तरबूज में। अभी बेची नहीं है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी 10 दिन के बाद स्टार्ट होगा।
3: अच्छा, 10 दिनों के बाद ये तरबूज शुरुआत हो जाएगा ना। इसमें क्या देखभाल किए थे और क्या तरकीब अपनाई थी इसमें?
4: हर फसल का अलग एक सिस्टम होता है मैनेज करने का।
3: अच्छा,
4: इसका तरबूज का जो इसका बीमारियां होती है उसके हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं, और फिर बहुत तरह के इसमें बीमारियां आती है अलग अलग तरह के, उसके अलग अलग फसलों में अलग अलग इन कीड़ों का होता है प्रकोप होता है, तो उसके लिए अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं।
3: चलिए, अब ये तरबूज भी देख रहे हैं, आपका बैंगन भी बहुत एकड़ों में लगा हुआ है, कुछ जो है लगाने की तैयारी में भी लगे हुए हैं, तो कौन सा बैंगन का किस्म लगाते हैं आप सुनील जी?
4: अभी तो एक साल से यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो VNR ग्राफ्टेड है गाछी वो ज्यादातर किसान प्रयोग कर रहे हैं, और बाकी नॉर्मल जो रहता है बैंगन का गाछ तो उसमें मरने का शिकायत बहुत ज्यादा रहता है। इसमें भी ग्राफ्टेड वाला में भी मरने का शिकायत है, लेकिन इससे थोड़ा कम मरता है, लेकिन इसमें भी मरता है।
3: देख रहे थे बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है ना,
4: कोई काले जैसा बैंगनी कलर का रहते हैं, कोई हरा जैसा भी रहेंगे, बहुत तरह के बैंगन होते हैं।
3: अब सुनील जी, आप बात करते हैं कि आप 15 एकड़ में खेती करते हैं, खेती करने के साथ साथ ये बताइए कि खेत से बाजार तक का सफर कैसे तय करते हैं? यदि हम कहेंगे कि जो आपको 15 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो बहुत सारे एकड़ों में तो देख रहे हैं लगा हुआ है फसल पहले से भी, और अभी लगाने भी जा रहे हैं, तो कैसे आप तैयारी करते हैं जो खेत से बाजार तक का सफर को आप तय कर पाते हैं फसलों द्वारा?
4: देखिए, जैसे कि जो व्यापारी होता है, जो मिडिल मैन होता है, वो यहाँ से हम लोग का जो भी फसल रहता है वो रेट के हिसाब से यहाँ से लेके जाता है।
3: अच्छा।
4: और वो अभी कहाँ सप्लाई करता है, दूसरे राज्यों में भी। हजारीबाग में बहुत कम जाता है, लेकिन दूसरे राज्यों में ज्यादातर जाते हैं हम लोग का।
3: मतलब आप जो है बीच के जो व्यापारी होते हैं उनसे आपका संपर्क होता है ना? हाँ। तो जो जिस समय का रेट रहता है, जिस समय का कीमत दाम मंडी में रहता है, वही हिसाब से उसको बुला देते हैं।
4: हाँ,
3: और सीधे आप बेच देते हैं यहीं पे?
4: हाँ, व्यापारी उठा लेते हैं अगर फसल अच्छा हुआ तो। अगर उसमें भी कुछ रहा, दिक्कत हुआ फसल में, कोई क्वालिटी का इशू हुआ तो वो व्यापारी नहीं उठाएगा, उसके बाद फिर आपको खुद ही उसको बेचना पड़ेगा।
3: कि हमारा फसल अगर अच्छा रहा तो आसानी से बिक जाता है ना। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि खेती किसानी जो है आपको किस तरह से राहत देता है और कैसे आप इसे एक रोजगार बना कर रखे हैं, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे। क्या आपको फायदा नजर आया, घर परिवार कैसे चल पाता है
4: खेती में? तो देखिए, बहुत तरह का किसान होता है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको वैसा मार्केट के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। मौसम का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, मौसम के हिसाब से अगर जैसे फसल खड़ी फसल में अगर बारिश पत्थर पानी हो गया तो सारा तो नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग मौसम के हिसाब से बहुत बहुत मतलब इसमें इशू रहता है। और बाकी इसमें अभी तो चल ही रहा है, जैसे जिस तरह से आप मैनेज कर पाएंगे उस तरह से आप मुनाफा कर।
3: अगर लागत की बात करते तो एक सीजन में कितना लागत लग जाता है, अगर यदि बैंगन की खेती की ही बात करते हैं तो?
4: बैंगन का खेती है कितना, जितना आप लगा सकते हो। अब एक एकड़ में लगाओगे तो उसके हिसाब से आपको गाछी तो लेना, एक एकड़ में 4,000 लगभग पौधे लगते हैं।
3: अच्छा,
4: बैंगन का तो उसके हिसाब से आपको एक एकड़ में लगभग 4,000 या 5,000 गाछी लगेगा। उतना ज्यादा 50-60 हजार का सिर्फ गाछी हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा महंगा गाछी है।
3: अच्छा, अंत में जानना चाहेंगे कि 4 महीने की जो खेती होती है, एक सीजनेबल जो होती है, तो कितना मुनाफा हो पाता होगा?
4: मुनाफा तो हर साल का अलग अलग होता है।
3: हाँ,
4: अगर अच्छी फसल हो गई तो अच्छा हो जाता है मुनाफा। हाँ, खेती से ही हम लोग घर चलते हैं और पापा भी काम करते हैं।
3: खेती बाड़ी से जुड़े हो ना?
4: हाँ,
3: तो कुल मिलाकर खेती बाड़ी से ही पूरा सारा काम चलता है। और ऐसे भी देखिए, कोई रोजगार करता है कहीं पर जाके काम करता है, लेकिन आप अपने खेतों में भी अपना कीमती समय देते हैं, तो 4 महीने में ही जो भी फायदा होना होता है अच्छे ढंग से हो जाता है, जिससे घर परिवार अपना जीवन खुशहाल रहता है ना। कई महिला भी मजदूर यहाँ आई यहाँ पे, और कई महिला मजदूरों को भी आप रोजगार दे रहे हैं।
4: लेडीज को बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है, हम लोग हर डेली का 10-15 रेजी डेली का लगता है हम लोग का।
3: तो उन लोगों को भी प्रतिदिन आप रोजगार देते हैं। हाँ। उनका भी जीविकोपार्जन यहीं से हो जाता है।
4: इधर आसपास के जितना भी गांव है
3: जी,
4: वहाँ से महिलाएं आती है। लेबर तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है।
3: हाँ हाँ।
4: लेबर लाना भी बहुत मुश्किल है, जो आता है उसको मतलब रोज हर दिन सालों भर उसको रोजगार मिलता है यहाँ पे।
3: आप खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियों को बताएं, साथ ही साथ बैंगन की खेती करने वाले भी हैं और बहुत सारे बैंगन जो है लग भी चुका है और तैयारी में भी है ना। तो 15 एकड़ में खेती बाड़ी का काम करते हैं, घर परिवार को चलाते हैं और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किए। सुनील जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए।
1: तो अभी जानकारी सुन रहे थे व्यावसायिक खेती के बारे में, बता रहे थे सुनील यादव, जो अपने अनुभव को बताएं कि किस तरह से अपने भी खेती करते हैं, कई लोगों को रोजगार भी देते हैं।
2: और ये थे जुलजुल गांव सदर हजारीबाग के, और इनसे जो बातचीत कर रहे थे वो थे प्रकाश कुमार राणा।
1: तो इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जाने का वक्त हो चुका है। तो अपने दोस्त प्रकाश को
2: और मुझे श्याम को
1: इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार।

खेती बाड़ी, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घर में इस वक्त शाम के 6 बजने को ही, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और खुफिया तंत्र इस गंभीर खतरे को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय वाटर टास्क फोर्स की बैठक की। इसका उद्देश्य भीषण गर्मी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया गांव के पास आज बालू लदे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। और जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। जल पुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक मुख्य समाचार भी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 6:02 और 42 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम इशू वाणी सुन रहे तमाम दोस्तों श्रोताओं और दिगर सामाईन का स्वागत है। खैर मकदम है आप ही के इस कार्यक्रम में आधे घंटे के इस साजो संगीत व दिलचस्प जानकारियों के कार्यक्रम में आज आपके साथ में अली शब्बीर। कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। दोस्तों कहिए कैसे आप सब, नौ उम्र और जमा

साल विद्यार्थियों व नौनिहालों के इम्तिहानात के दौर खत्म हुए और 10th 12th की परीक्षाओं के परिणाम भी तकरीबन आ चुके हैं। कईयों ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प को बुलंद हौसलों और इरादों से बेहतर तरीन कामयाबी हासिल की है और परीक्षा में सफल हुए हैं। मुबारकबाद है, शुभकामनाएं उनको। उन सबको अब आगे की तैयारी की राह चुननी है। हम उम्मीद करते हैं बेहतर प्लानिंग और अच्छे मार्गदर्शन व रहनुमाई से आगे मजीद कामयाबी हासिल करते रहेंगे और अपनी मंजिलों को सर करते रहेंगे। दोस्तों, भागम भाग की इस दौड़ में अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त को मद्देनजर रखते हुए अब उसे बरकरार रखना भी इस दौड़ में बड़ी कामयाबी समझी जाती है। अपनी सकाफत, अपनी संस्कृति, खासकर भारतीय संस्कृति को भी बचाए रखना मौजूदा दौर में बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आगे हम मजीद चर्चा करेंगे इसी मौजू पर, यानी भारतीय संस्कृति और योग। फिलहाल रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत, लेकिन गीत से पहले ये जरूरी संदेश।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों और प्यारे श्रोताओं, गीत और से आप तो महसूस मसरूर हुए होंगे, आइए कुछ बात करते हैं भारतीय संस्कृति और योग पर। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में योग एक प्राचीन आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक अभ्यास है जो भारत की विरासत का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य शरीर, मन और चेतना के बीच संतुलन स्थापित करना है, जो सनातन परंपरा के अनुसार व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और योग की उत्पत्ति और इसके इतिहास की हम बात करते हैं। उसके इतिहास की हम बात करें तो मालूम होगा कि योग हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा है। ये युज यानी जोड़ना से बना है, जिसका मतलब है व्यक्ति चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन। दोस्तों, हम मजीद चर्चा करेंगे इसके जीवन शैली और वैश्विक मान्यता पर, लेकिन फिलहाल रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, लॉ की डिग्री के बाद करियर की संभावनाएं। इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर सान्याल और उनसे बातें की हैं श्वेता रानी ने। आइए सुनते हैं पहले उनकी ये बातचीत।
7: दोस्तों, लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए करियर को लेकर क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में आइए जानते हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जयदीप सन्याल जी से। तो सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
8: आपको भी नमस्कार, ऑल इंडिया रेडियो हजारीबाग शाखा को।
7: सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं लॉ की पढ़ाई करने वाले, वो किस कक्षा से लॉ की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं?
8: लॉ का पढ़ाई शुरू कर सकते हैं ग्रेजुएशन का बाद, 3 इयर्स कोर्स जो ग्रेजुएशन में रहते हैं, उसके बाद में मेडिकल पास करने के बाद में, उसके बाद में इंजीनियरिंग पास करने के बाद में, और उसके साथ साथ हम लोग का 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 12 पास करने के बाद, मतलब क्लास 2 जो पास करेंगे, आइदर बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ भी पास करें।
7: अच्छा, हर एक स्ट्रीम के बच्चे लॉ कर सकते हैं। लॉ की पढ़ाई करने वाले लोग जो होते हैं उनकी सोच होती है कि लॉ की पढ़ाई के बाद सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट बना जा सकता है, तो करियर को लेकर के और भी किस तरह की संभावनाएं होती हैं लॉ की पढ़ाई करने के बाद? सर, इस विषय में थोड़ा जानकारी दें।
8: देखिए, हम आपका साथ एक सहमत नहीं है ये विषय में, क्यों लॉ का पास करने के साथ साथ सिर्फ जो माथा में हम लोग का है जो सिर्फ एडवोकेट ही बनेंगे, ये बात सही नहीं। एडवोकेट का साथ साथ लॉ का एक डिग्री है, लॉ का साथ में हम जैसे पास करेंगे उसके बाद में हम सोचेंगे जो हम कोई यूनिवर्सिटी में टीचर बनेंगे, लॉ का टीचर बनेंगे, इसके लिए हम मास्टर डिग्री करेंगे लॉ में, मास्टर डिग्री के बाद में भी हम लॉ में पीएचडी करेंगे, पीएचडी करने के बाद में भी हम यहाँ पर लॉ फैकल्टी हिसाब में हम ज्वाइन कर सकते हैं कोई यूनिवर्सिटी में जहाँ पर लॉ का पढ़ाई होता है। एक नंबर किया। दो नंबर किया, लॉ में सिर्फ एडवोकेट ही हम नहीं हो सकता है, हम जुडिशियल ऑफिसर भी बन सकते हैं। लॉ का साथ में हम सिर्फ लॉ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग नहीं है, हम यहाँ पर एनजीओ का एडवाइजरी बोर्ड में भी हम रख सकते हैं, इसके साथ साथ हम लीगल ऑफिसर भी बन सकते हैं। सोचिए, सेबी बोल के एक संस्था है जो शेयर नियंत्रण करते हैं सारा भारत में, उसमें भी हम लॉ ऑफिसर हिसाब में हम जो योगदान कर सकते हैं। इसके बाद में पंचायत लेवल पर लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, ये सब चीज जो लेते हैं उसमें भी हम योगदान कर सकते हैं। मेरा टैलेंट रहेगा तो हम और ऊंचा में जा सकते हैं। सिर्फ एडवोकेट करके, एडवोकेट मतलब है कि हम LLB पास करके हम एडवोकेसी कर सकते हैं। एनरोलमेंट करके उसमें ऑल इंडिया बार एग्जाम देना पड़ता है। ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के बाद हम वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन LLB करने के बाद में भी हम बहुत कुछ में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आज का दिन में जैसे CA, जैसे CS, CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी, CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA मतलब है कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब चीज में हम लोग जाएंगे एग्जाम देने के लिए। लॉ पहले पास कर चुका है तो उसमें मेरा बहुत छुटकारा मिलता है वहाँ पर। क्यों? ए कोर्स का साथ मेरा ए कोर्स अभी लिंक है, लॉ का पेपर सारा चीज छुटकारा मिलता है। इसमें बहुत जो लोग थोड़ा से इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा में थोड़ा से होशियार है, थोड़ा से नजर देता है, वो लोग CA CS कॉस्टिंग लॉ का पास करने का बात कर लेता है। क्यों? पहले करने में ये लोग का ज्यादा पेपर देना पड़ता है, लेकिन लॉ पास करने में ये लोग का बहुत पेपर छुटकारा मिल जाता है।

0: जे जितना राजनीति बीती थी वो लोग ज्यादा लॉ लाइन से ही गया। क्यों? कोई एडवोकेट है, कोई बैरिस्टर है, कोई क्यों? पहले वाला राजनीति जितना था नेता लोग सारा चीज लॉ का बैकग्राउंड था। और क्यों? लॉ नहीं जानेंगे तो आपका जो मिनिमम जो ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अधिकार है, ये आप लोग का बहुत कुछ जानकारी नहीं होगा। तो मेरा राय है ये सब आज का दिन में लड़का लड़की लेडीज जेंट्स जो भी हो कुछ ना कुछ मिनिमम चीज जानकारी रखना चाहिए। तो लॉ एक बहुत बड़ा चीज है, बृहत चीज है, एक दिन में नहीं सीख सकता है, उसके लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा।
1: तो लॉ की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं या उसके अलावा जो आम लोग होते हैं उन्हें भी कानून की थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखनी चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके, है ना। हम ये जानना चाहेंगे सर कि किन किन प्रक्रियाओं से गुजर करके कौन सी परीक्षाएं पास करके, जैसा कि आपने अभी बहुत सारी इसमें करियर की बातें आपने कही है, तो वो किस किस तरह की परीक्षाओं से गुजर करके उस पोस्ट को हासिल किया जा सकता है?
0: देखिए, फर्स्टली हम बात करते हैं जैसे एक लॉ ईयर बनने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम देना पड़ता है आज का दिन। तो क्यों? ऑल इंडिया बार एग्जाम देंगे, पास करेंगे तो अभी वो प्रैक्टिस में जा सकते हैं, एक नंबर गया। दो नंबर है, उसके बाद में 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद जुडिशियल ऑफिसर होने का कारण में वो एग्जाम देंगे जुडिशियल। आइदर आप जैसे झारखंड है तो झारखंड में जेपीएससी है, बिहार में बीपीएससी है, वेस्ट बंगाल में पीएससी है, ऐसी टाइप यूपीएससी है, सारा चीज ये सब चीज जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा दे करके पास करने के बाद वो आपने होंगे जुडिशियल ऑफिसर रैंक में जाएंगे। वैसी टाइप का जैसे एपीपी होता है सरकारी वकील, सरकारी वकील यहाँ पर सिलेक्शन वैसी पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन होता है। उसके बाद में लीगल ऑफिसर, कोई बैंक में लीगल ऑफिसर लेना पड़ता है, बैंक का वो लीगल ऑफिसर पीओ होता है, प्रोविशनरी ऑफिसर होता है। प्रोविशनरी ऑफिसर क्या होता है, जे आप लीगल ऑफिसर लिए लीगल इतना हमको चाहिए, 2 पोस्ट 4 पोस्ट 5 पोस्ट जो भी हो, तो उसके लिए बैंक लेंगे एग्जामिनेशन, बैंक कंडक्ट करेंगे, बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड वो लेंगे। उसके बाद में रेलवे में लीगल ऑफिसर है, रेलवे में रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो लेंगे लीगल ऑफिसर के लिए, वो पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसमें जो अप्लाई करेंगे एवं वो जो कैरी फॉरवर्ड होगा उसके बाद में जो सिलेक्शन होगा।
1: तो
0: एलएलबी करने के बाद उसके चाहिए आपका मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस, कोई कोई जाएगा 5 इयर्स एक्सपीरियंस भी चाहिए। जैसे सोचिए जे एलएलबी देने के बाद में भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जा सकते हैं, हम आईपीएस सर्विस में भी जा सकते हैं। क्यों? बहुत एलएलबी जो पास करने के बाद आईएएस बना और फिर भी लॉ का साथ पुलिस डिपार्टमेंट का जोग है, इसलिए आईपीएस बनना बहुत सुविधा है और कानून भी जानते हैं और ऑल टाइम पुलिस का हाथ में कानून रहता है, तो कानून का किताब पढ़ के डिग्री लेकर के सारा चीज ये लोग का सुविधा होता है। तो इसके साथ साथ आपको पहले बोला है सेबी में भी ज्वाइन कर सकता है लॉ ऑफिसर, बहुत अच्छा दिन है। और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आपका लीगल ऑफिसर का बहुत युक्ति है, उसमें पोस्ट मिलता है, अभी उसमें भी जा सकता है। उसके बाद में आपका एनजीओ सेक्टर में जा सकता है, बड़ा बड़ा एनजीओ सेक्टर में। उसके बाद में देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई लॉ कमीशन रहता है, तो लॉ कमीशन में क्या होता है मेंबर भी बन सकता है। उसके बाद देखिए कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर फोरम में जुवेनाइल बोर्ड में ये सब में भी बन सकता है। तो वैरायटीज जगह है इसमें जो जिसमें सक्सेस हो सकता है।
1: एलएलबी पास करने के बाद जो एडवोकेसी के क्षेत्र में जाते हैं तो फिर उनके एक लंबे पीरियड एक्सपीरियंस के बाद फिर उन्हें वे जज बनने के काबिल भी बन जाते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
0: जज हम लोग जो यूज करते हैं इन जनरल वे में साधारण पब्लिक जो आम पब्लिक जो बोलता है जज साहब है, जज साहब एक ही जगह में रहता है, एक है हाईकोर्ट में और एक है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग का जो लोअर कोर्ट है जैसे हम लोग का जैसे सिविल कोर्ट है, सदर कोर्ट है, एसडीओ कोर्ट है, ये सब चीज में जो जगह है ये जगह में आपका जज नहीं बोलता है, जुडिशियल ऑफिसर बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बोलता है। और है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का नाम थोड़ा से उठ गया, उसमें डायरेक्ट उसको डिस्ट्रिक्ट जज बन रहा है। तो हाईकोर्ट जज बनने के लिए का सवाल था जज, तो हाईकोर्ट जज बनने के लिए दो तरीका होता है, एक है आपका एडवोकेट जो प्रैक्टिस करता है हाईकोर्ट में उसी से सिलेक्शन होता है, उसका केस देखते हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी देखते हैं, उसके इनकम टैक्स देखते हैं, उसके बाद फाइल जाता है राज्य सरकार होकर के, लॉ कमीशन होकर के, आईन मंत्रक सेंट्रल गवर्नमेंट से होकर के चीफ जस्टिस होकर के आपका फिर लॉ मंत्रक से होकर के राष्ट्रपति तक, वो लोग का अपॉइंटमेंट में जो सिग्नेचर होता है वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। तो बात यह है ये जज वैसी टाइप का होता है जो वहाँ पर एक्सपीरियंस दिखाएंगे, केस दिखाएंगे, ये सब चीज दिखाएंगे, उसमें जज बनता है। उसके बाद में उसी से डायरेक्ट होता है कुछ दिन एक्सपीरियंस करके, दो दूसरा जगह में चीफ जस्टिस बन करके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जो है उसी से भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें भी दो उदाहरण है, इसमें हम लोग का जो अभी एक ही लेडी जज है सुप्रीम कोर्ट में,

0: मिसेस मालोत्रा, वो भी डायरेक्ट वहां से ही हुआ, एडवोकेट एसोसिएशन से हुआ था, प्रैक्टिस करते थे, वहां से डायरेक्ट वो जज बना सुप्रीम कोर्ट में।
1: लॉ की पढ़ाई करने वाले जो छात्र होते हैं वे किस तरह से अपनी योग्यता और अपने अंदर का जो स्किल्स होता है वो किस तरह से वो डेवलप करें ताकि उनका जो करियर है वो ज्यादा ब्राइट।
0: लॉ का टीचर हिसाब में हम बात करते हैं, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम दूसरों के साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं ये बात। बातें हैं, एक स्टूडेंट सिर्फ किताबी ढंग से पढ़ करके लिखना अलग चीज है, उसको कोई ज्ञान लाभ उतना नहीं होगा। ये चीज किताबी ढंग से तो देखेंगे कि पढ़ाई करेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल ढंग से उसको दैनिक उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे करके, जैसे कोई टीचर है, टीचर का साथ वो लाइब्रेरी जाए, सब लॉ कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में भारी भारी किताब रहता है, उसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट केसेस रहता है, ऑल इंडिया रिपोर्टर रहता है, हाईकोर्ट केस रहता है, ये सब थोड़ा से डिस्कस करना चाहिए टीचर के साथ। टीचर के साथ जैसे केस डिस्कस करेंगे, कैसे करके केस होता है, कैसे करके जजमेंट होता है, कैसे करके ऑर्डर होता है, ये सब चीज जो प्रैक्टिकल होता है वहां पर क्या होता है, फैक्ट क्या है, आपको जानकारी हो जाएगा तो आप ड्राफ्टिंग कर सकता है। कैसे करके ड्राफ्टिंग, आपका लिखना पड़ेगा, एक प्लेंट लिखना पड़ेगा, ये सब चीज प्रैक्टिकल चीज है, क्लिनिकल चीज है, ये सब चीज आप करेंगे तो आगामी दिन उसमें थोड़ा से जो स्टूडेंट है उसका प्रिविलेज मिलेगा। ये चीज बहुत बड़ा चीज होता है, सिर्फ किताब का अंदर आंख रख करके ये सब चीज नहीं चलना चाहिए, उसके साथ साथ आपका आंख खुला रखना चाहिए, कान खुला रखना चाहिए और आपका पेन खुला रखना चाहिए कागज का ऊपर। जो चीज आप लिखेंगे अपना मन से, आपका ड्राफ्टिंग आपका बहुत मायने रखता है, क्यों एक ड्राफ्टिंग करना, एक केस तैयार करना, ये बहुत आर्ट होता है, एक कला होता है एक एडवोकेट के लिए। तो ये सब चीज प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा तो जरूर वो विन करेंगे।
1: कार्यक्रम में चलते चलते आप लॉ की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को क्या सलाह या संदेश देना चाहेंगे?
0: लड़का लोग जो पढ़ाई कर रहा है, क्या लड़की लोग जो पढ़ाई कर रहा है, ये लड़का लड़की लोग थोड़ा से लाइब्रेरी फॉलो कीजिए, लाइब्रेरी में बहुत किताब है, ये बात नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट जो है वही हम पढ़ेंगे, ये बात नहीं है। एक एडवोकेट होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड, वहाँ का सब ज्ञान रखना चाहिए। अभी आपका हाथ में कोई इंजीनियर आकर के बोल रहा है मेरा इतना लॉस हुआ, ये सब चीज हुआ, ये सब चीज हुआ। कोई डॉक्टर आकर के बोला जे एक रोगी मर गया, हम मेरा ऊपर अटैक कर रहा है उसके साथ में। कोई मास्टर आकर के बोल रहा है मेरा सर्विस लेकर के कोई प्रॉब्लम हुआ। तो वैरायटीज केस आते हैं एडवोकेट के पास, तो एडवोकेट के पास जब वैरायटीज केस आते हैं तो आपको सारा सब्जेक्ट का ऊपर ज्ञान रखना चाहिए। बिना ज्ञान में आप कैसे करके बात कर सकेंगे? वो बात का ऊपर आपको लिखना भी पड़ेगा सारा चीज। इतना तक हम सबको हम सलाह दे रहा है, जितना मेरा लॉ स्टूडेंट है, क्या दूसरा कॉलेज का जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट आपका किताब का साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और विशेष करके आज का दिन में जो मेडिएशन करके एक बात चल रहा है, तो मेडिएशन का ऊपर भी थोड़ा से ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर कोर्ट जाइए, कोर्ट में आप सारा चीज देखिए, आपका सीनियर किसी का साथ आप जाइए, सीनियर कोई टीचर का साथ जाकर के कोर्ट का विषय में देखिए, सारा चीज ध्यान दीजिए, वो आपको जरूर डेवलप्ड होंगे, और दो दिन का बाद आपका चेहरा मुस्कुराएगा।
1: बिल्कुल सही आपने कहा सर, जब अंदर से कॉन्फिडेंस हो किसी चीज के, भरपूर नॉलेज का, तो उसका रिजल्ट चेहरे से दिखता ही है। आत्मविश्वास हो जाए तो उसकी जो मुस्कान है या उसका जो प्रतिफल है वो चेहरे जरूर दिखता है। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया और लॉ से संबंधित आपने बहुत सारी जानकारियां दी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: तो दोस्तों श्रोताओं, आप सुन रहे थे डॉक्टर सान्याल से लॉ की डिग्री के बाद करियर की क्या संभावनाएं, हमसे बातें की थी श्वेता रानी ने। और हम समझते हैं कि आप जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया उस पर अगर आप अमल करते हैं, उस तरह से अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो फिर कामयाबी तो आपके कदम चूमेगी ही, ये इसमें कोई शक शुभ शुभात की बात नहीं रह जाती है। दोस्तों अब थोड़ी चर्चा करते हैं भारतीय संस्कृति और योग के जीवन शैली पर। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति में योग केवल आसन नहीं बल्कि यम नियम ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से एक अनुशासित जीवन शैली है। दोस्तों भारत की ये देन आज विश्व भर में यानी पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और मानसिक शांति योगा फॉर हार्मनी के लिए अपनाई जा रही है। दोस्तों योग प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, तनाव यानी स्ट्रेस को कम करता है, हार्मोन विनियमन में मदद करता है और योग भारतीय दर्शन और वसुधे कुटुंबकम की भावना को पोषित करता है। ये स्वास्थ्य शिक्षा और कला के माध्यम से समाज को प्रभावित और मुतासर भी करता है। दोस्तों ये और इस तरह की मजीद जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो के घर में इस वक्त शाम के 6:30 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम फिल्म संगीत।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं अमर अकबर अंथोनी फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कच्चे धागे, इस फिल्म का गीत आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार सानू की। अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म दोस्ताना से, आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

किशोर कुमार और लता आशा भोसले को आपने सुना फिल्म दोस्ताना में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम में फिल्म हजारीबाग से अली शब्बीर के साथ। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म डॉन।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो के घर में इस वक्त शाम के 6:55 होने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता

के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यपाल ने बिहार आई बैंक का नाम बदलकर झारखंड आई बैंक करने का दिया निर्देश। संस्थान को आयुष्मान योजना से जोड़ने के भी आदेश। बिजली पानी संकट को लेकर राजधानी रांची समेत राज्यभर में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बताया संवेदनहीन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यशाला संपन्न। कम बारिश की आशंका के बीच मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए सुखाड़ योजना बनाने के निर्देश। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश और आंधी से मौसम बदला। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात बाधित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शिक्षा में मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में बिहार आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इसका नाम जल्द बदलकर झारखंड आई बैंक करने और भूमि संबंधी समस्याओं को तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने तथा आधुनिक सुविधाओं के लिए सीएसआर फंड जुटाने पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। धनबाद में प्रेस वार्ता कर श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है।
3: इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है, जो प्रिंस खान दो ऑडियो इधर वायरल हुआ, किस प्रकार से पाकिस्तान के रास्ते पंजाब के रास्ते इलीगल आर्म्स को मंगाया जा रहा, इसके बाद भी सरकार मौन। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतर्राज्यीय ही गिरोह ये नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी, तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते।
1: राजधानी रांची समेत राज्यभर में बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली कटौती और पेयजल किल्लत का जल्द समाधान नहीं हुआ तो भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन और उग्र करेगी।
4: झारखंड से आजादी रांची में लोग पानी और बिजली को मांग को लेकर को लोग उतरने का काम किए हैं और उसी प्रकार का दृश्य पूरे राज्य में बनी हुई है और प्रत्येक प्रशासनिक जिले में इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता सड़कों पर उतरने का काम किया है। लेकिन ये सरकार देशों की सोई हुई है, इनको आम लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है।
1: जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में देश भर के पर्यावरणविद और विशेषज्ञ जुटेंगे। जल पुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है।
5: पहाड़ों और नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें एक सशक्त कानून बनाए। अब इसका संरक्षण संवर्धन जरूरी इसलिए है कि हमारा जो विकास हो रहा है उस विकास में सबसे अधिक खतरा पहाड़ों और नदियों पर ही है। तो जब तक कोई कानून ऐसा सशक्त नहीं रहेगा जिसके आधार पर जिला प्रशासन या कोई भी कठोर कानूनी कार्रवाई कर सके, इसलिए एक ही विषय रखा है सेमिनार में और वह है लॉ फॉर माउंटेन्स एंड लॉ फॉर रिवर्स।
1: रांची स्थित सेना भर्ती कार्यालय ने आज घोषणा की है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के तहत कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन 1 जून से 15 जून तक किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से 4 दिनों से लापता 18 महीने की अदिति पांडे की तलाश के बीच आज सुबह गाड़ी गांव नाले से कुछ क्षत विक्षत अवशेष बरामद हुए हैं। सिटी SP पारस राणा ने बताया कि फिलहाल इन अवशेषों की आधिकारिक पहचान नहीं हो सकी है।
6: हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी तो NDRF की टीम और नगर निगम की टीम, उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, क्योंकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल या बाल होने की पुष्टि नहीं हुई और उसी आधार पर उस DNA सैंपलिंग के लिए भेजा गया है।
1: रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कृषि कार्यशाला में आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुईं। उन्होंने बताया कि अल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका को देखते हुए सभी जिलों को आकस्मिक सुखाड़ योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लेकर सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। रांची से आई नोडल अधिकारी प्रियंका सांगा ने बताया कि इस ऐप से मरीज, डॉक्टर, लैब और फार्मेसी आपस में जुड़ेंगे।
7: एक रिव्यू मीटिंग रखा था हमारे सिविल सर्जन की अध्यक्षता में, इस फाइनेंशियल ईयर की जो रिपोर्ट थी उनसे हम लोगों ने साझा किया और उनको बताया कि अभी तक उन्होंने कितना इस मॉड्यूल को अच्छी रीति से स्टार्ट किया है, नहीं किया है, DSM की कनेक्टिविटी मिली है नहीं मिली है, उनको भी हम लोगों ने शामिल किया कि अपने प्रॉब्लम्स को रखें, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो उनको नोट डाउन कराए।
1: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर आज सदर अस्पताल में विधायक ममता देवी और सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली दर्जनों नर्सों को सम्मानित किया। विधायक ने अस्पताल की सफलताओं का श्रेय नर्सों के सेवा भाव को दिया।
8: आज इंटरनेशनल नर्सेस डे आज मनाया जा रहा, सभी हमारी नर्स बहनें उसको बहुत बहुत बधाई। हमारे रामगढ़ जिले में अगर हमारा सदर अस्पताल आज नई ऊंचाइयों को अगर छू रहा है, कई सारे अवार्ड अगर प्राप्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारी नर्स बहनें वहां पर काबिले तारीफ हैं। यहां के स्टाफ, यहां के डॉक्टर, सभी का भरपूर सहयोग रहता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में भी ये सदर अस्पताल और भी विकसित हो।
1: मौसम। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन

0: आंधी के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर है। इससे बिजली के तार टूट गए और आवागमन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आगामी 17 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ द्वारा 15 मई से बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में अंडर 16 समर क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जाएगा। महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि 20 दिनों के इस कैंप में खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस और क्रिकेट की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यपाल ने बिहार आई बैंक का नाम बदलकर झारखंड आई बैंक करने का दिया निर्देश। संस्थान को आयुष्मान योजना से जोड़ने के भी आदेश। बिजली पानी संकट को लेकर राजधानी रांची समेत राज्यभर में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बताया संवेदनहीन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यशाला संपन्न। कम बारिश की आशंका के बीच मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए सुखाड़ योजना बनाने के निर्देश। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश और आंधी से मौसम बदला। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात बाधित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में बीते शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विभागों के 1,39,000 मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही इसमें 2,39,00,000 रुपए राजस्व की भी प्राप्ति हुई। इस अवसर पर गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक भी किया।
2: अपील है कि वो निर्भय होकर, निर्भीक होकर इस लोक अदालत में आगे बढ़कर आए। त्वरित न्याय दिलाने का हम आश्वासन देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी हो, परेशानी का निपटारा कराया जाएगा।
1: विगत 10 मई रविवार को प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के 169वीं वर्षगांठ पर गढ़वा की सांस्कृतिक संस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच की ओर से तिलक करो इस मिट्टी को नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने 169 दीपक जलाकर प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निदेशक नीरज श्रीधर ने बताया,
3: प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जितने भी हुतात्मा रहे, जिन वीरों ने, भारत माता के सपूतों ने जो बलिदान दिया है, उनको सादर समर्पित करते हुए प्रत्येक वर्ष हम लोग 10 मई को एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है तिलक करो इस मिट्टी से। 1857 के कालखंड की अमर शहीदों के गांव से मंगाई गई मिट्टी को कलश में रख करके हम लोग विधिवत उसका पूजन करते हैं और फिर अखंड भारत के मानचित्र पर दीप सजाकर जलाते हैं और उस मिट्टी से तिलक करके उन वीरों की गाथा को हम लोग गीत संगीत भाषण उद्बोधन और शौर्य प्रदर्शन के माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों और उनके सुकृतियों के बारे में जान सके और गर्व से कह सके कि हम।
1: गढ़वा जिले में बिजली पानी की समस्या को लेकर विगत 6 मई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा के गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने किया। इस अवसर पर विधायक श्री तिवारी बिजली पानी की समस्या पर बहुत आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि
4: 50,000 चापानल खराब है, 2,000-3,000 रुपया में जिसका मरम्मती हो सकता था उतना पैसा भी सरकार के पास नहीं है। पूरे देश में झारखंड और वेस्ट बंगाल एक नंबर और दो नंबर पर आता है, सबसे नीचे के पायदान पर। झारखंड में 8% लोगों को ही जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है। ऐसे में 92% लोग आज बेचारे हताश हैं, निराश हैं, गंदा पानी पी के, चुराने का पानी पीने को विवश हैं, इसलिए बीमारी के भी शिकार हो रहे हैं।

0: हैं। आज ये सांकेतिक हड़ताल है कि सरकार जागे और लोगों को जल्दी एडमिशन पैसे का जो घोटाला हुआ है उस पैसे को खोज करके बाहर ला करके और लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करे।
1: जिले में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। जिले का तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है। इस समय जिले का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत तक 42 डिग्री तक तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान बताया है। इसको देखते हुए गढ़वा वासियों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू से निजात मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
2: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 7:15 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम झनकार।

ये आकाशवाणी का हमारे वाक केंद्र FM 102.1 MHz पर शाम के 7:16 हो चुके हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम झनकार। झनकार प्रोग्राम का पहला गीत लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डिस्को डांसर से आवाजें हैं उषा उत्थुप और बप्पी लहरी की।

उषा तो साथियों को अपने सुना फिल्म अरमान में आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार फिल्म हजारीबाग अली शब्बीर के साथ। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुना रहे बेटा फिल्म का ये गीत, आवाजें अनुराधा पांडवाल और उदित नारायण की।

जिनका अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त शाम के 7:30 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं फिर 102.1 MHz पर शाम के 7:30 और 45 सेकंड हो चुके हैं। पेशा खदमत है सदा भारत फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। लीजिए प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं आशिकी फिल्म से, आवाजें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की।

और उदित नारायण के गाए हुए फिल्म डर की सी गीत के साथ सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट से ही समाप्त होता है।

ऑल टाइम हिट्स। अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घर में इस वक्त रात के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आप ही के हाथों पर मबनी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

हम आकाश वाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफ एम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं। पेशे खदमत है आप ही के खातों पर मबनी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। प्रोग्राम सुनने वालों को अली शब्बीर का नमस्कार। आइए आगाज करते हैं फिल्म क्रांति के इस नगमे से जिसमें अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। और इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है हजारीबाग पतरातू से बेसिलकर को मधु रितु रचना मितु श्वेता पल्लवी रोहित प्रवीण नदीम मनीषा और समस्त परिवार ने। और ये खत आया है पुराने श्रोता संघ मगनपुर से। आप हैं अमजद अली और अब्बास आलम। मेन रोड बड़का गांव से आप हैं नीरज मालाकार आशीष मालाकार विकास मालाकार रंजना मालाकार गुड़िया रानी गोलू भोला और उनके मम्मी पापा। आप हैं अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार रोशन कुमार वंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से ही आप हैं अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। आप सब ने लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को फिल्म क्रांति में सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत एफएम हजारीबाग से अली शब्बीर के साथ। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सौतन फिल्म का आवाज है किशोर कुमार की और सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सब भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। आप है नवा टोला भीखनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान। आप है डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशा हुसैन और मरियम बुशरा। ये खता है माली टोला खीरगांव से। आप हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। यहीं से आप हैं कल्लू माली, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार। आप सबने फिल्म सौतन में किशोर कुमार को सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये नक्शा।

जिला बोकारो झारखंड स्वांग महावीर स्थान से आप हैं, कमला देवी रवानी, रीना देवी रवानी, रंजीत रवानी, अनिल रवानी, उषा देवी रवानी, रूही कुमारी रवानी, रवि कुमार रवानी, रितेश कुमार रवानी और रितिका कुमारी रवानी। आप हैं मानगढ़ से मिथिलेश पांडे, बबीता कुमारी, नीतू पांडे, अंशु कुमार पांडे, बाबू सुधांशु कुमार पांडे और समस्त परिवार। आप सबने फिल्म सिलसिला का गीत सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए, हम आपको सुना रहे हैं इस फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अगला नगमा हम लेकर आए हैं फिल्म बेताब से, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में, आप सबकी फरमाइश पर। आप हैं कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, केखनशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू, पचमंदी रोड हजारीबाग से। और आप हैं आदर्श नगर मलोट से राजेश राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइनी शर्मा। ये खत है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। आप हैं नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, शुएब खान, मुज्तबा खान, रऊफ और शाहिद। गांधी बाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सबने लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को फिल्म बेताब में सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब लुत्फ उठाइए अपनी पसंद के इस नगमे का।

चिपा कला बड़का गांव से ये खत आया है। आप हैं बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू, संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। आप हैं जीटी रोड बरही से सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी और कुसुम आर्यन। आप हैं नाज मंजिल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन, इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, अरहान, हमजा मुसम्मिल, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, शाजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। कोकिलवाड़ा उराई जिला मुजफ्फरपुर साहब है मोहम्मद फैसल शेख और नुजहत जहां नास। आप सब ने फिल्म बेमिसाल का गीत सुनने की फरमाइश की। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत। आवाज़ें किशोर कुमार, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की।

आपकी चाहत। अभी आप सुन रहे थे आप ही के खतों पर मबनी फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 8:45 होने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक। रात 9 बजे आप सुनेंगे News@9 और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय

0: सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिमबोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: तेरा मोह।
1: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
2: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकरी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हरी भोली।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

0: अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।
1: जरा

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: साथ रखना।
1: जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद, हमें याद रखना
0: तेरी दुनिया।
2: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 10 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10:58 हो चुके हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म आप तो ऐसे न थे से हमने लिया है। इस गीत को आवाज है मोहम्मद रफी की।

आपने सामने फिल्म का गीत आपने सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा एफएम हजारी बाक्सी। अगली पेशकश एक बार फिर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म अब्दुल्ला में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा फिल्म हजारीबाग से अली शब्बीर के साथ। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म 20 साल बाद में।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 10:30:41 हो रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज के फनकार। आज के फनकार प्रोग्राम में आज हम लीजिए आपको सुनवा रहे हैं हेमलता की गाई हुई कुछ चुनिंदा फिल्मों की चीदा चीदा नगमे। लीजिए प्रोग्राम का पहला गीत सुनिए, अखियों के झरों से फिल्म का ये गीत, आवाज हेमलता की।

आप तो ऐसे नहीं थे फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज थी हेमलता की। हेमलता को आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार में। प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म नैया का ये गीत।

चित्तूर फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज थी हेमलता की। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुनैना का ये नगमा, आवाज है हेमलता की। और आप उठाइए इस नगमे का लुत्फ, प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाजत। शब बखैर।

आज के फनकार सुन लेते हैं हमारे कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 11 बजने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है।

0: और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi Palaniswami has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic interaction on Bharat Innovates 2026 in New Delhi as part of preparations for the Global Innovation Event scheduled to be held in Nice, France from 14th to 16th of June next year under the India-France Year of Innovation. The interaction brought together ambassadors, high commissioners, diplomats and government officials to discuss opportunities for global collaboration through India's growing innovation ecosystem. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In Maharashtra, 6 devotees were killed and around 15 others injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of district this afternoon. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. The injured have been admitted to hospitals in Jat and Sangli Civil Hospital for treatment. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for practical implementation of Prime Minister Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchase of gold. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight, chasing a target of 169 runs. Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 11:10 और 22 सेकंड हो रहे हैं। यही संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे अपने बुधवार के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुभरात्रि। जय हिंद।